0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
3: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
2: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: जून महीने की पहली तारीख है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 4:05 हो रहे हैं. अगर चिलमन दुश्मन है तो चलिए पर्दा हटाते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं. यहाँ पर मंडे मॉर्निंग 1st of June. प्रणाम सभी को. अ वेरी गुड मॉर्निंग. सो वंस अगेन नीतू आपके साथ आपके इस महीने को और रौनक बनाते हुए, मज़ेदार बनाते हुए, लेकिन अकेले बिल्कुल नहीं, आपका साथ.

आज और मिलेगा. थैंक यू सो मच एंड वट एवर यू माइट बी स्टिल वॉचिंग. आई नो बहुत सारे लोग थके मानते हैं. कल आपने अच्छे से मदर्स डे मातृदिवस सेलिब्रेट किया एंड बस सभी माओं का आशीर्वाद सब पर रहे. और कई लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए लेकिन कोई बात नहीं, दिल में वो जोश था, वो फीलिंग्स थी और हम भी आपके साथ ही हमेशा की तरह. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के साथ ऑन 5499-1294. आज है 1st of June और आज ही के दिन शायद आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. तो आपके संग लेट एक्ट्रेस नरगिस दत्त, यस संजय दत्त की मम्मा, आज उनका बर्थडे है. 1st of June 1929 को उनका जन्म हुआ था. और एक ऐसे महान कलाकार एक्ट्रेस को हम आज याद कर रहे हैं उनके एवरग्रीन सॉन्ग्स और मूवीज के साथ. थोड़ी बहुत बातें होंगी तो चलिए दिल की गिरह को खोलते हैं, आपके मैसेजेस का इंतजार करते हैं.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: ये तो हम वादा नहीं करते और पता भी नहीं कर सकेंगे कि सात रंग के सपने आपके लिए बुन पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, जब तक जान में है जान, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन गानों के जरिए आपके दिल को थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी राहत डेफिनेटली मिल जाए और ढेर सारा प्यार आपके जीवन में रहे. ऑलराइट, 5499 1294 पर लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. रेडियो मस्ती टीम रिश्मो फ्लाक से हैं आप, हेमांशी, कुष्मिता, लवना, बीरमती, जयशन, हर दोयार परिवार के लिए थैंक यू हम आपको कहेंगे दोस्त, जो सुबह शाम हमारे हम सफर बनी रहती हैं. ओम नमः शिवाय. लेस्पेरेंस त्रिबिशे से है शीला जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक. गुड मॉर्निंग आप आज फैमिली रोशनवाल से, ज्योति फ्रॉम शातु बिनागस, गानाज विजल, आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार के नाम. एंड यहाँ पर है कौन, वेल मैं देखती हूँ, हर हर महादेव आपको भी भाई सूरज शर्मा सजादा एंड आपके पूरे परिवार त्रियुरे से. All birds find shelter during a rain, yes, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. Good morning. Namaskar, Tony ji. Rojwa se hain aap. Choti choti baatein kehte hain, lekin asardar.

है जरूर, आप भी इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें एंड बस अपने जीवन को साकार खूबसूरत बनाते चले। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई आपके यहाँ भी, आज सुबह भी शायद कहीं कहीं बारिश हो रही है। लेट मी नो ऑन 5499 1294।

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Lovely evergreen songs on the waves of Radio Musti 549-912-94. बस शारदा वाला गाना आपको अच्छा लगा मिस्टर गुलाब जगा सिंह, थैंक यू. आपके नाम पूरे परिवार काहोलिन से छोगालाल परिवार, आप है फ्रॉम गुडलैंड्स. बहुत बहुत प्यार और बस आशीर्वाद मिल रहा है आपका भी. गुड मॉर्निंग लक्ष्मी फ्रॉम गुडलैंड्स. आप अपने मामा पापा को हैप्पी मदर्स डे फादर्स डे अभी भी विश कर रहे हैं एंड सो लकी टू हैव देम बोथ एज योर पेरेंट्स. भाई है कि गान, आपकी बहने कविता सेजल, लेट भाई केविन और ब्रदर इन लो मून, सबको मिस करते हैं. और जो आपके पास है उनको हमेशा अपने करीब रखिएगा. जो नहीं रहे उनकी यादें हमेशा, उनका प्यार हमेशा दिल में बसे रहेंगे.

अगर आप ऐसे ही डर डर के जिएंगे तो बात तो निकलेगी नहीं मुंह से दिल से भी, तो बस अपने प्यार का इजहार कर दीजिएगा। यू लव समवन, अगर सच्ची मोहब्बत है तो डरने की क्या बात है भाई। आप देखोगे कि आप एक सही कदम उठाओगे तो हर तरफ प्यार ही प्यार मिलेगा। 5:33 बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप, एंड ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, प्यार के साथ आगे बढ़ते चले। विशिंग बो कुहाश टू ऑल दोज गोइंग टू वर्क, और इस बारिश के मौसम में आए हाय हाय क्या बात है। चलिए यहाँ पर एक प्यारा सा फोन कॉल आया था और कहते हैं कि प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू माय हस्बैंड, और आप हैं मिस्टर सुभाष, आज आप 68 इयर्स के हुए हैं। सो आपकी पत्नी संगीता, शिक्षा साथ में, मतलब कि पत्नी है संगीता, बेटियां शिक्षा साथ में, शैली, दर्शनी, आयुषी, ऐशा भी है साथ में, त्रिषा, आपके भाई धीरज, सुदेश, प्रकाश, करुणा साथ में है, आरती शास्त्री, सिरतन परिवार, खास आपकी सास हैं रमावती, दियांशा, सांझ, प्रवेश, मधु परिवार, सब की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ऑफ कोर्स हमारी पूरी टीम की तरफ से भी, जिन जिन का आज बर्थडे है, बेस्ट विशेस। हर हर महादेव किचन में आज विजल, आपकी मामा शारदा जो है आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, क्या बात है सुया। आपकी तरफ से अनिता, बिमल, संजीव, रेशमि, नाती पोते, किटी, किमी, सब आपको विश कर रही हैं हैप्पी बर्थडे। अगर आप ही आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं तो हमारी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: इसको संजोग कहे कुछ और कहे आई डोंट नो. किसी का जन्मदिन होता है, कोई आता है, कोई चला जाता है. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द बर्थडे ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट यानी कि जो प्रोमिनेंट एक्ट्रेस हुआ करती थी अपने ज़माने में इन द गोल्डन एरा, नरगिस, जो हमेशा पोर्ट्रे करती थी सोफिस्टिकेटेड और इंडिपेंडेंट वुमेन. हर जॉ में उन्होंने काम किया है और ख़ास तौर से जो 1950s एंड 60s तीन डिकेट्स के करियर में उन्होंने कई रोल्स निभाए हैं. और बस एट द एज ऑफ 6 यानी कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट के हैसियत से भी और बहुत सारे लीड रोल्स में, वेल लेट्स से बरसात, राज कपूर के साथ अनगिनत मूवी रही, तकदीर, तमन्ना, अंदाज, आवारा फिर 420, चोरी चोरी, मदर इंडिया और कितने अवार्ड से सम्मानित की गए रात और दिन के लिए. जो नेशनल फिल्म अवार्ड की जो इनॉग्रल रही वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो हकदार रही सबसे पहले. और देखिए ना, कल हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे मातृ दिवस, मदर्स डे. एक और खूबसूरत आवाज़ बॉलीवुड की वो चल पड़ी और हमेशा उनको कंपेयर किया जाता था टू लता मंगेशकर. आप थी लेट सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने अनगिनत गाने गाए. ख़ास तौर से जब एक समय हुआ करता था लता जी गा नहीं रही थी, वो भी रफ़ी साहब के साथ कुछ तो हुआ था रॉयल्टी को लेकर, तो तब सुमन कल्याणपुर की एंट्री हुई थी और ने इतने सारे गाने गाए. तो चलिए अभी मदर इंडिया का ये गाना आप सुनते हैं, फिर उसके बाद एक श्रद्धांजलि लेट सुमन कल्याणपुर के नाम.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: दुख सुख तो लाइफ के यानी कि पहलुए होते हैं, बस आपके जीवन में सुखी हो यही हम कामना करते हैं. लेट्स स्टार्ट.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज आपकी मेहनत और लगन ऑफिस में सबका ध्यान खींचेंगी. बॉस आपके काम से इतने प्रभावित रहेंगे कि प्रमोशन को लेकर चर्चा भी शुरू हो सकती है. क्या बात है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा क्योंकि छोटी सी लापरवाही नुकसान दे भी सकती है. कुछ छुपे हुए विरोधी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: धन और खुशियों की बरसात लेकर आया है ये दिन. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से मन हल्का और प्रसन्न रहेगा. बिजनेस में नई योजनाओं पर निवेश करना भविष्य में शानदार लाभ दे सकता है. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे संकेत बन रहे हैं. वैसे आपके कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है जिससे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज का दिन सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा. परिवार में किया हुआ पुराना वादा पूरा करने का समय आ गया है. लंबे समय बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है लेकिन बीती बातों को दोहराने से बिल्कुल बचे. कहीं घूमने फिरने का प्लान आप बना सकते हो. अपने आसपास के लोगों से निजी बातें साझा करने में सावधानी रखें.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: वल आज का मान सम्मान और प्रभाव दोनों बढ़ाने वाला दिन है. हालांकि कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से कहा सुनी होने की संभावना है इसलिए धैर्य बनाए रखें. बी पेशेंट. बड़ों की कोई बात आपको थोड़ी चुभ सकती है लेकिन समझदारी इसी में होगी कि बात को आगे ना बढ़ाएं. जल्दबाजी और भावुकता में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव और पढ़ाई के दबाव से राहत मिलेगी. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है जहां नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी हो सकती है. वैसे दूसरों के मामलों में बेवजह बोलने से बचे हाँ, वरना परेशानी आपकी ही बढ़ सकती है.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज प्रॉपर्टी और बिजनेस में उनसे जुड़े मामलों में किस्मत आपका साथ देगी. किसी बड़ी डील को लेकर आप महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं. खास लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है जिससे घर में उत्साह बना रहेगा.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहद खास रहेगा. मनपसंद काम मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा और भाई बहनों का सहयोग सपोर्ट भी आपको मजबूती देगा. घर में उनके जो यानी कि जो बड़े हैं जो सदस्य हैं उनके साथ बिताया गया समय आपकी कोई परेशानियों का समाधान निकल सकता है. वाहन की खराबी अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं और छोटे बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: वल्ला आज आपके आसपास का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. आपके चेहरे की चमक सबका ध्यान खींचेंगी. जीवन साथी नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकता है. दैट्स व्हाई उनसे बातचीत में समझदारी रखें. शेयर मार्केट में बिना एक्सपर्ट सलाह के निवेश करना भारी पड़ सकता है. निवेश की परेशानियों को लेकर आप अपने जो चर्चा है वो जरूर कीजिएगा और उसका समाधान मिलने की भी संभावना है. वैसे दिन धीरे धीरे आपके पक्ष में होता नजर आएगा.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: ऑलराइट आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है. आसपास के लोगों को पहचान कर चलना जरूरी होगा क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता. सिंगल लोगों के जीवन में प्यार की एंट्री हो सकती है और दिल रोमांस से भर जाएगा.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज का दिन दोस्तों और अपनों के साथ हंसी मजाक और मौज मस्ती में बीतेगा. यदि आपने किसी से कोई वादा किया तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करें. मन में ईर्ष्या या द्वेष जैसी भावनाएं रखने से रिश्तों में दूरी आ सकती है.

0: रसवाएं दिल साफ रखे। कोई सरकारी मामला जो लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें आपको मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो रास्ता डेफिनेटली खुल जाएंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन आपको सफलता की ओर बढ़ाने वाला रहेगा। सेहत को नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए शरीर के संकेतों को समझें। किसी रिश्तेदार की बात

0: उनसे चर्चा करना जरूरी होगा और किसी से मांग कर वाहन चलाने से बचे, परेशानी पड़ सकती हैं आप।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सकारात्मक सोच आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। नई नौकरी के आप बेहतर अवसर मिलने के योग बन रही हैं। मन भगवान की भक्ति और आध्यात्म में डूबा रहेगा। हालांकि संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। घर में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

5:56 छह बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। वेरी गुड मॉर्निंग मीला राम जी, कल मोताब लॉन्च से आपके पूरे परिवार के नाम हर हर महादेव प्रेमिला जी, आपो फ्रॉम प्लेन दी पपाया, आज रिजल पति रंजीत दी शोभा और आपके पूरे परिवार के नाम।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: 6 baje hai. संक्षिप्त समाचार सुनते हैं आपसे आदिति नमस्कार आपको
6: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार तटीय क्षेत्रों को इरोजन प्रदूषण जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाया जा सके इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया शीर्षक रहा नुलाकुत नुलालवा आम जनता विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए एक पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान के लिए एकत्रित हुए इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श हुए तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौती

0: व्यक्तियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा समंदर तटों, प्रवाह रेखाओं, नदियों और तटीय समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्रित किए गए। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रिकोस नामक इलाकाई परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना। बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसी संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजनाओं के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी ले बॉयटन कहते हैं कि यह अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज़्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह बादल घिरे रह सकते हैं। पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादल पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों को प्रभावित करेंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: The best of the 90s, that was Hariharan Chitra ki awazon mein Sazae Kala Pani. Oh my God, 90s ke gaane evergreen hote hain. Especially for you, Avnish, going to work. Bon courage, my dear, and have a blessed day ahead. And 6:9 minutes, welcome back. तो ये है जून महीने की पहली तारीख. Really hope कि ये साल जो है, अभी तो we've already reached the half of the year, and देखते ही देखते चुटकी बजा के ये जो साल है वो भी चला जाएगा. लेकिन आपका और हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा. हाँ, that's for sure. A very good morning to you, जो कविता. कैसी है my dear? ठीक ठाक साथ में है यहाँ पर. कैसी होनी है तो बिल्कुल ठीक हूँ. आप है हेमलता भंजन पोतपीमो से, और मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी. भले ही कल सेलिब्रेट किया, लेकिन मैं मानती हूँ आप हर रोज सेलिब्रेट कर रही हूँ. हाँ, हेलो नीतू. आज भाई महेंद्र, ओके ओके, आप है भाई महेंद्र. अ वेरी गुड मॉर्निंग बम बम भोले आपको जी, एंड ये दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो. किशन रघुनाथ सुखी नाम से हैं आप. गाना आपकी बेटी जिया, आज उनका बर्थडे है. सो बेस्ट विशेस टू यू बेटा, एंड ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आपके अपनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयाँ. कैसी है ललिता एंड जीतन फैमिली, एंड अब्दुल सराबानू साथ देते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है. सो अगर आप ही यू आर हिटिंग द रोड, प्लीज ड्राइव केयरफुली.

बारिश ने आग लगाई, प्लीज बी वेरी केयरफुल इफ इट्स रेनिंग। एंड बीना, आप रोज सवेरे हमारे साथ जुड़ी रहती है, थैंक यू सो मच। म्यूजिक का दोस्त हर रोज आपके मूड को सेट करते हुए। गृहलक्ष्मी रामव मुखा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज आप 60 इयर्स की हो गई हैं। रणवीर श्रावंत, रवीश प्रिशा लवशा, डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार। नमस्ते जी, नेक्स्ट गाना गुजार टू हुम, एज यूजुअल बदवक विदेशी, एंड एनी गाना आपके लिए भी अनुषा एंड डियर वंस। नमस्ते जी, आर उर्मिला बुबन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सुछोगलाल परिवार मेलविल गौगुप से आपको ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं भेज रही है। अगला गाना केन के नाम, वेल यहाँ पर आपके पिक्चर मैसेजेस भी आते रहते हैं, थैंक यू सो मच। आयशा, आयशा कैसी हैं आप? नमस्ते जी, मामा शारदा आज 83 इयर्स की हो गई हैं, ओके, उनको हार्दिक शुभकामनाएं आपकी तरफ से। सुया दामाद लाले, विक्की, कृति, अवनी, वंश, सुया बिहारी कोंगोमा से पूरे परिवार, गुड मॉर्निंग आपको कुमार एंड देवी चिन फैमिली। एंड गुड मॉर्निंग कहती है, नेक्स्ट गाना गुजार चुमान, चाहती हैं कि बारिश होती रहे, हैं ओके हेमा, और आपके लिए भी आपके पूरे परिवार के नाम।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 624 माने के 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। हैप्पी मदर्स डे टू मामा मीरा चुलन अवांस और जोंशे बेटी दूतिका राकेश रोशन आपको ढेर सारा प्यार मामा। ये अगला गाना आपके नाम मिस्टर देवानंद दुर्गा एंड फैमिली फ्रॉम ग्रीष्म फ्लैक। सो मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम 7 से यानी कि 5 से 7 के बीच और हमारे बाद यानी कि 7 बजे के उस पार विदिता आपके संग इन मॉर्निंग बेट। हैव ए नाइस डे अहेड। स्टे सेफ।

इस खूबसूरत माहौल में आपका नाम भी जोड़ते चले विद्याप्ती विद्याती गोबर्धन, आज आप 65 ईयर्स की हुई हैं। हार्दिक शुभकामनाएं माया श्वेतन माधवी चिंतिया और आपके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन सब परिवार ब्रह्मस्थान से।

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिक ऑफ लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। 11 से 15 मई के बीच मालदीव में आयोजित

0: इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलो फिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिक ऑन फ्लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। शीर्षक रहा नूला को नूला लुआ, आम जनता, विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए इस पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए। इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श हुए, तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा समंदर तटों, प्रवाह रेखाओं, नदियों और तटीय समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्र किए गए। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रेकोस नामक इलाकाई परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना। शैली नियरबर्न, यशना मिश्रा।
1: प्रतिभागियों को बड़े नक्शे पर उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया गया जो कटाव यानी इरोशन, प्रदूषण या फिर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों की जरूरतों से प्रभावित हैं। इनमें से फ्लिक ऑन फ्लाक के ग्राम सलाहकार जेगा पायात को तटीय कटाव, रियल एस्टेट दबाव तथा लगून और भूजल भंडारों के प्रदूषण के जोखिमों को लेकर चिंता है। वे बताते हैं, एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जहां सभी को सुविधाएं मिले, जैसे बाथरूम, शौचालय, कैंपिंग एरिया आदि। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी जानते हैं कि कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कूड़ेदान भी तो जगह जगह पर होने चाहिए। सप्ताह के दिन सफाई कर्मचारी भी ज्यादा होने चाहिए। कलाकार और फोटोग्राफर कॉल एनी याद दिलाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना अर्थव्यवस्था की रक्षा करना भी है। हम पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर करते हैं और पर्यटन पर्यावरण पर टिका हुआ है। यदि हमने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो हम इसके जरिए किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर कचरा एकत्र करने में सक्रिय पत्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि कचरा लगातार जमा हो रहा है, भले ही कूड़ेदानों और उपयुक्त ढांचों की मौजूदगी है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार के दिन कूड़े का ढेर जमा हो जाता है और ट्रक आता है तो वो भर जाता है। लोग कूड़ेदान में इसे नहीं फेंकते, बगल में ही डस्टबिन होता है, तब भी वे जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर कूड़ा फेंक देते हैं। पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते। प्रकृति आधारित समाधानों को प्राथमिकता देना, जैसे कि रेत के तलों यानी ड्यून्स का पुनर्स्थापन, समुद्री घास के मैदानों और प्रवाह रेखा का संरक्षण, ये हिंद महासागर आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख विकल्पों में से एक हैं। इसके संचार प्रमुख जिल रिबुए ने इस पर जोर दिया।
0: बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसे संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजनाओं के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी लेबोटों कहते हैं कि ये अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस को येलो फिन ट्यूना मछली के अतिरिक्त 500 टन का कोटा प्राप्त हुआ है। 11 से 15 मई के बीच मालदीव में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2

0: 2027 के लिए येलोफिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमी के विकास को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इलाकाई स्तर पर मत्स्य गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति और मजबूत होगी। शबनी जुजिया, यशना मिश्रा।
1: हिंद महासागर में चुना मछलियों के लिए आयोग यानी कमीशन दे टों दे लोसियन इंडियन CTOI के 30वें सत्र में मॉरिशस के लिए कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। देश को विशेष रूप से येलोफिन चुना के अपने कोटे में वृद्धि हासिल हुई है, जो 2027 में 10,490 टन से बढ़कर 10,990 टन की हो गई है, यानी 500 टन की अतिरिक्त मात्रा। यह निर्णय मॉरिशस, केन्या और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद लिया गया और इससे मत्स्य पालन गतिविधियों, समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्यात, रोजगार तथा ब्लू इकोनॉमी के विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस ने स्किपजैक ट्यूना के आवंटन मानदंडों में संशोधन की भी वकालत की ताकि उसका कोटा 13,908 टन से बढ़ाकर 19,009 टन किया जा सके। हालांकि इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी है, लेकिन चर्चाओं को रचनात्मक माना गया और इस मुद्दे पर 2027 में पुनर्विचार किया जाएगा। यह पहल क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संस्थाओं में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए अधिक न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 2025 में CTOI के उपायों के प्रति 87.3% अनुपालन दर के साथ देश ने क्षेत्रीय संगठनों में अपनी विश्वसनीयता को मजबूत किया है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है और मत्स्य क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा तथा ब्लू इकोनॉमी के विकास संभावनाओं को और सुदृढ़ किया है।
0: भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कुदा और सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सिंचामुतु राजमीला सीतामणि, यशना मिश्रा।
1: हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश न केवल टापू क्षेत्रों से जुड़े समान चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि वे फॉसिल फ्यूल पर भी निर्भर हैं। युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हमारे देशों की स्थिति नाजुक हो चुकी है। 47 दिनों के ईंधन भंडारण की क्षमता के साथ दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना मुश्किल है। इसलिए अब ऊर्जा ट्रांजिशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ईंधन का आयात और मूल ढांचों की चुनौतियों के बावजूद भी मडागास्कर समुद्री संसाधनों के कारण टिकाऊ विकास और ऊर्जा ट्रांजिशन की क्षमता रखता है। हिंद महासागर आयोग के महासचिव इब्राहिम नोबियाहिशा और जापान के दूतावास की कार्यवाहक प्रमुख मायू यामाओ ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जापान की विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला। गहरे सागर और जलवायु प्रकोपों को लेकर जापान खुद को ढालने में सक्षम है। रियूनियन और उसके साझेदारों के लिए समुद्र में टर्बाइन्स एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परियोजना है। इस ऊर्जा परिवर्तन को केवल सहयोग और साझेदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है। हिंद महासागर में हम समावेशी खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, मात्र आपात सामानों के लिए, जैसे लिक्विफाइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देश आयात करके आसपास इसे वितरित कर सकता है। इस संगोष्ठी के दौरान

0: कई प्रस्तुतियां दी गई, खासकर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और अन्य समुद्री ऊर्जा प्रणालियां जो कि जापान की पहल हैं।
1: कोदा आर्ट सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान 20 साल से ज्यादा की उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल से जुड़ी डे केयर फैसिलिटीज की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद हुए गैर सरकारी संगठनों, देखभाल करने वालों और अधिकारियों ने ज्यादा समावेशी, मानवीय और आत्मनिर्भरता उन्मुख समाज के हक में प्रस्ताव दिए। मकसद है दिव्यांग लोगों को समाज में बेहतर जगह दिलाना और उन्हें नौकरी की ज्यादा संभावनाएं उपलब्ध कराना। शबनी जुजिया, यशना मिश्रा।
0: यह किसने कहा कि कोई व्यक्ति जो विकलांगता की स्थिति में है 20 वर्ष की आयु के बाद कार्य जगत में अपनी जगह नहीं बना सकता। हाँ, कठिनाई होगी, लेकिन उन्हें भी बाकी सभी लोगों की तरह जीने, काम करने, आगे बढ़ने का अधिकार है। आज लगभग 50 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह मजबूत संदेश दिया है। इनमें मारी फांस व्योलेट फॉये दे ला ट्रिनिते की अध्यक्ष भी शामिल हैं, जो वर्षों से विकलांग व्यक्तियों के साथ काम कर रही हैं। हम 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का स्वागत करते हैं जो स्पेशल नीड्स स्कूलों में नहीं जाते। उनके विकास प्रशिक्षण में भी हम मदद देते हैं ताकि जहां तक हो पाए वे नौकरी की दुनिया में प्रवेश कर पाए। Jean-Marie Malepas, Fondation Georges Charles के प्रबंधक एक भावनात्मक सच्चाई की ओर भी इशारा कर रही हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब ये व्यक्ति अपने परिवार के सहारे से वंचित हो जाए। इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर, मजबूत और बिना डर के दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करना जरूरी है। 20 साल का हो जाने पर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को यूं ही नहीं खुद के पैरों पर छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं। उन्हें इस योग्य बनाना चाहिए कि वे भविष्य में अपना जीवन व्यतीत कर। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अधिक कर्मचारियों की भी आवश्यकता है, विशेषकर अधिक युवाओं की। सिंजी पामा क्यूपिप स्थित एसोसिएशन जन इनाडप्टे से बताती हैं कि एक विकलांग व्यक्ति को अक्सर दैनिक जीवन में कई सहायकों की जरूरत होती है। हमारा काम ज्यादा है उनके साथ, क्योंकि उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। कर्मचारियों की भारी कमी है, यदि इस कमी को पाटा जाए तो हमें मदद मिलेगी। और हर संघर्ष के पीछे एक सरल इच्छा होती है, गरिमापूर्ण जीवन जीना, काम करना, समाज द्वारा स्वीकार किया जाना, क्योंकि अंत में असली विकलांगता वे नजरें और बाधाएं हैं जो समाज खुद खड़ी करता है।
1: यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले हफ्ते स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्टेटस प्रोग्राम का फाइनल लगा। ये पहल तृतीयक शिक्षा मंत्रालय की रही। मकसद रहा छात्रों में नवाचार और ठेकेदारी के प्रति दिलचस्पी प्रोत्साहित करना। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रथम संस्करण में भाग लिया। 3 बेहतरीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। विधि मासीपुरन।
2: UTM में स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर एचुजों कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने अपने बड़े पैमाने के एरोपोनिक्स प्रोजेक्ट जुलिकर के लिए जीता है। उसे ₹10,000 की पुरस्कार राशि मिली है, जिसे वो अपनी परियोजना में निवेश करने की योजना बना रहा है। उसने अपने इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वाकांक्षी बताया है, जिसके लिए बड़े दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ये एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी जिसमें काफी समय की मांग थी, काफी सहनशीलता की जरूरत थी ताकि सही फॉर्मूला मिल सके। इस परियोजना को शुरू करने के लिए बेहतरीन रास्ता ढूंढूंगा। UTM के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार हरिराम ने उच्च शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय की इस पहल की सराहना की। उनके अनुसार ये कार्यक्रम छात्रों को अपने ठेकेदारी कौशल को विकसित करने, अपने विचारों को अभिनव परियोजनाओं में बदलने तथा व्यावसायिक दुनिया की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए एक ठोस मंच प्रदान करता
3: है। अक्सर छात्र काम

0: ढूंढने के लिए पढ़ाई करते हैं। यूटीएम चाहता है कि अगर केवल 5% छात्र ही एक ठेकेदार बने तो ये वे छात्र देश की संपत्ति में अधिक योगदान देंगे और वे अन्य लोगों की भर्ती करेंगे और इस तरह एक बेहतर मॉरिशस का निर्माण होगा। स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर एटीजों कार्यक्रम में यूटीएम की ये पहली भागीदारी युवाओं के बीच नवाचार, रचनात्मकता और ठेकेदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
1: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज़्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की। 780 से ज़्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया और 220 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवाएं काफ़ी हद तक बाधित हुईं। आखिर में चले जाते हैं मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। उधर पूर्व से आ रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह खासकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्वी ढलानों और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। 11 से 15 मई के बीच मालदीव में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलो फिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादे हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कमापू ओरिएटा वाकवामी, कमापू ओरिएटा वाकवामी 73 साल की 73 years old की मिसेज बीबी नाजमा गेंदू, मिसेज बीबी नाजमा गेंदू पैदाशी नाम हुसैन बकस, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके भाई जनाब नूरानी हुसैन बकस के मकान कमापू और ये तावाकवा से उठाकर दफनाने की पहली नमाज जनाजा के लिए इलाके की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए थ्वामा मेल का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। फ्रांस में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री हरिदत्त खुशी जो पहले हनुमान रोड रिश्मोफ्लाक रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। वे विजय नाम के ज़्यादा से ज़्यादा जाने जाते थे।

इनका अंतिम संस्कार कल दिन के 10:15 बजे इनका अंतिम संस्कार कल दिन के 10:15 बजे फ्रांस में ही किया जाएगा। लैवेंडर हिल लेन कुवेंट लोरेट क्यूबेक में लैवेंडर हिल

जो पैदाशी नाम महमूद हुसैन इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा दिन के डेढ़ बजे का जनाजा दिन के डेढ़ बजे के मकान लवेंदर हिल लेन को वोद लोहत के पिप से उठा कर दफनाने के लिए बिगहा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। निकोलसन रोड वाकवा में, निकोलसन रोड वाकवा में 62 साल की 62 years old श्रीमती इंदुमती रामचंद, श्रीमती इंदुमती रामचंद पैदाशी नाम बहोरा जो छाया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री पवन रामचंद की मकान निकोलसन रोड वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सल्फियाहिनो नंबर 5 की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 2 PM। नंबर 29 मामलों व्यय वाले पीटों में, नंबर 29 मामलों व्यय वाले पीटों में 97 साल की 97 years old बीबी ताहरा बुली, बीबी ताहरा बुली पैदाशी नाम हुसैन बख्श जो ताहरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके बेटे भाई हमीन बुली के मकान नंबर 29 मामलों वे वाले पीतों से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए वाले पीतों की अलवादी मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए गिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। मातिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया में, मातिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया में 85 साल की 85 years old की श्रीमती सोनमत रामोंधर, श्रीमती सोनमत रामोंधर पैदाशी नाम बेबिन जो जसमत नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री कृष्णा अशोक रामोंधर के मकान माचिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। नंबर 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस में, नंबर 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस में 80 साल की 80 years old श्रीमती प्रेमानंदी जोगू, श्रीमती श्रीमती प्रेमानंदी जोगू पैदाशी नाम हरकुन की मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 1 बजे, की अर्थी आज दिन के 1 बजे के मकान नंबर 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। रिवरसाइड कोंडेमास पावे में, रिवरसाइड कोंडेमास पावे में 45 साल के 45 years old श्री सत्यकाम्बिकाई, श्री सत्यकाम्बिकाई जो राम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पिता श्री विजय बिकाई के मकान रिवरसाइड कोंडेमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों कोंडेमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। बेल्टियर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में, बेल्टियर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 82 साल के 82 years old श्री बालकरण दीपचंद, श्री बालकरण दीपचंद जो प्रेमदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले रोजिल ट्रांसपोर्ट में शब्द गौ थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे के बेटे श्री भूषण दीपचंद के मकान बेल्टियर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। गांधी रोड एन एस लॉ में, गांधी रोड एन एस लॉ में 52 साल के 52 years old श्रीमती देवयानी लक्ष्मण, श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पैदाशी नाम जहाजिया जो देवयानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी गुरुवार 4 जून को इनके मकान गांधी रोड एन एस लॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय सूचित नहीं किया गया है। सैं रेमी सॉन दे फ्लाक में, सैं रेमी सॉन दे फ्लाक में 61 साल के 61 years old श्री रामसामी चनिगादू, श्री रामसामी चनिगादू जो मनोज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 11 बजे, की अर्थी आज दिन के 11 बजे के मकान सैं रेमी सॉन दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडेमास की श्मशान भूमि
ले जाई जाएगी।

today at 1 p.m. Cremation today at 11 a.m. Number B15, NHDC Ramjit Lane, Balison Rosebell May. And Ramjit Lane, Balison Rosebell May, Nabbe Salki, 90 years old, Srimati Anjale Narayan Sami Reddy, Srimati Anjale Narayan Sami Reddy, जो माइले नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी बेटी श्रीमती वेदिता ओमगम के मकान नंबर B15 NHDC रामजीत लेन बालीसोन रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड प्लान दीपा पायमी, रॉयल रोड प्लान दीपा पायमी 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्रीमती ओमिला बिसुन, श्रीमती ओमिला बिसुन पैदाशी नाम मिहदीदीन, इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 11 बजे इनके पति श्री रमेश बिसुन के मकान रोड प्लैंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी स्त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन लाविनिया सैंपियामी, स्कूल लेन लाविनिया सैंपियामी 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवंती धनवा, श्रीमती देवंती धनवा जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान स्कूल लेन लाविनिया सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। बालगोबिन रोड मालेगा सैंपियामी, बालगोबिन रोड मालेगा सैंपियामी 89 ईयर्स ओल्ड श्री पूरन नगचेदी जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और अलीब्रियों रोड वाकवा रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे इनके बेटे श्री विशाल नगचेदी के मकान बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अले बगिया कस्तेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: सुबह के 7:07 और हम साथ साथ है मंडे 1st of June. गुड मॉर्निंग. हे कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स. सब बढ़िया, सब ठीक, मूड में होना जी. अभी देखो महीना शुरू हो गया है जून का, और जून के महीने में आपको पता ही है ये इशारा करता है कि धीरे धीरे करके अभी हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे वक्त हैं, कई सारे ऐसे पल हैं जो बीतते चले जा रहे हैं, और शायद हम नोटिस भी नहीं कर रहे हैं कि वक्त भागता चला जा रहा है और हम कहीं पीछे नहीं रह जाए. इसीलिए हम आ जाते हैं आपके मूड को सेट करने के लिए. सो इट्स अ न्यू मंथ, द मंथ ऑफ जून. कितने सारे लोग हैं जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ऑफ कोर्स यहां पर विदिता आ गई है आपके मॉर्निंग बीट के साथ आपके रेडियो मस्ती पर. तो मस्ती तो होनी ही है, मस्ती होगी, लेकिन प्लीज डू सेंड मी योर मैसेजेस ऑन 5491294. अरे हमें भी तो पता चले कि हमारे दोस्त कहां कहां से हमें सुन रहे हैं और आज उनका मूड कैसा है. वैसे मंडे में ही मूड थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं जी, यहां पर हम बिल्कुल फटाफट उनको ठीक कर देते हैं. बस आपको ये बताना है कि आप कहां पे हो, कैसे हो. और फिलहाल बर्थडे सेलिब्रेशन तो हम करेंगे, अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड बहुत सारी बातें होंगी, गेम्स होंगे, क्यों नहीं.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: La petite, ils avaient tout songé. Mouti time avec Formland.
4: Madame Sheila, mais petit déjeuner.
3: Asté, et nous céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, le petit déjeuner de Paris.
4: Ah, ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smote.
3: Mais normal. Et quand vous sortez du travail, ben à plus réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland.
4: Mmh, ou fais-moi faire.
3: Asté avec Formland Hot Chocolate, l'avion complice ta mam.
4: Si à tout qui s'agose pour les goût, passez.
3: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Asté avec Formlaine, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Formlaine, ça même nous, Smart Choice.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Morning Beat.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: And yes, sir, this is your radio मस्ती जहां पर विनीता आपके साथ है. Good morning, सोनी. सोनी कहती है कि देखो मैं बस में हूँ और अभी मुझे पिचितगढ़ से त्या होश जाना है, लेकिन अभी तो वो पिचितगढ़ से कहीं और निकल गई होगी. कहती है आई एम लविंग दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच सोनी. सोनी सोनी बड़ी सोनी है. चलो यहाँ पर आप भी चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हो. मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हो. वैसे अगर आप हमें बस में सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर पूरी टीम हमें सुन रही है, तो थैंक यू सो मच गाइज. और हमारे जो ड्राइवर्स बाबू होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि भाई मूड बनी रहनी चाहिए इंसान को. थोड़ा सा स्ट्रेस जो है कम हो जाता है, स्पेशली रोड पे जब आप जाते हैं एंड बड़ी टेंशन होती है ट्रैफिक की. अब टेंशन लेने से क्या होगा, आपकी गाड़ी में पड़ थोड़ी ना आएंगे, आप उड़ थोड़े ना पाओगे, गाड़ी तो वही रहेगी, है ना. तो चलिए हम ऐसा करते हैं, मूड को बदल देते हैं, मूड में थोड़ा सा मस्ती ले आते हैं, क्योंकि ये है रेडियो मस्ती और यहाँ पर मस्त मस्त हम भी आ गए हैं मॉर्निंग बीट के साथ. तो चलिए बीट से बीट मिलाती चलो. और हमारे साथ अभी क्या करना है आपको, देखते हैं कि आज कौन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. डोंट फॉरगेट फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी हो जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उनको सरप्राइज करना है, तो जल्दी से उनका नाम और उनका फोन नंबर हमें भेजें ऑन 5491294.
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.
0: Yeah, I can guess you can feel the musti now. Chai coffee loge ya tamma tamma loge.

यस फ्रेंड्स, बर्थडे सरप्राइज लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से. अभी हमारा बर्थडे सरप्राइज जो है उसे हम अभी जो हमारा लकी ड्रॉ है वो हो गया है. चलिए कॉल करते हैं और उनसे बात करेंगे.

0: बच्ची हंसेगी या बच्ची हमें रुलाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन इनसे बात करने का टाइम आ गया है, चलिए मिलते हैं। हेलो
1: हेलो
0: यस हाय दिस इज रोशनी राइट?
1: यस आई एम।
0: या रोशनी यू आर अ लाइब्रेरियन?
1: यस।
0: ओके रोशनी, माय डॉटर वाज आस्किंग मी वन बुक। हेलो My daughter
1: yes?
0: was asking me one book. I don't know what kind of book is this. Why did the donkey cry? You have this book? Hello, Roshni?
1: Yes, yes.
0: Yeah.
1: Your daughter is asking for...

0: And is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: And yes, so चलिए मिलते हैं अरविंद से, जानते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है. A very good morning, अरविंद.
5: Good morning आपको. A very good morning to all the listeners. यूरोपियन चैंपियंस लीग ट्रॉफी लिए कल पेरिस सेंट जर्मेन की टीम वापस पेरिस आई. जिस दिन ट्रॉफी उठाया उसी दिन पेरिस में काफी हिंसक घटनाएं हुई, वायलेंस, पर अब पेरिस में शानदार रंगारंग स्वागत किया गया इन लोगों का. लगभग 80,000 फैंस के साथ पराद और पार्क डू प्रिंस तक सेलिब्रेशंस. एलिजी में प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ा सम्मान है. इमेंस फियरते पुर ला फ्रांस. इमानुएल मैक्रों ने आगे कहा कि फ्रांस के लिए ब्लू की तरह पेरिस सेंट जर्मेन के पास भी दो सितारे हैं. आशा है फ्रांस की फुटबॉल टीम तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल लेकर आए. वैसे इस चैंपियंस लीग सीजन के लिए पेरिस सेंट जर्मेन से विच्चा वराचखेलिया को बेस्ट प्लेयर चुना गया, वो जोजा का है. आर्सेनल का प्रीमियर लीग ट्रॉफी पैरेड कल लगा. चैंपियंस लीग में हार की निराशा छोड़ते हुए कई हजार फैंस टीमों को सल्यूट करने आए थे. एफए कप में मैनचेस्टर सिटी का डबल. सबसे पहले पेप गॉर्डियोला की टीम ने एफए कप जीता था. कल महिला टीम की बारी थी. मैनचेस्टर सिटी की वुमेन टीम ने ब्राइटन टीम को 4-0 से हराया. मैनचेस्टर यूनाइटेड का युवा खिलाड़ी टाइलर फ्लेचर, जो फर्स्ट टीम के साथ केवल 17 मिनट खेल पाया था, स्कॉटलैंड के साथ वर्ल्ड कप में खेलेगा. डारेन फ्लेचर का सुपुत्र टाइलर अपने फैमिली के साथ फैंस बनकर, सपोर्टर बनकर वर्ल्ड कप देखने जाता, पर अब स्कॉटलैंड से बुलावा आया है. इसे कहते हैं भाग्य, जो अपने आप नहीं आता, मेहनत से कमाया जाता है. लिवरपूल नए मैनेजर के लिए अंदोनी इराओला से बातचीत शुरू कर रहा है. फॉर्मल टॉक्स शुरू हो रहे हैं. बोर्नमुथ का एक्स बॉस इराओला एनफील्ड रोड का नया बॉस बनने के लिए फेवरेट हैं. कुछ और नाम आए थे जैसे स्टुटगार्ट से सेबास्टियन होयनेस और लांस का पियर साज, पर उम्मीद है इराओला बेहतर ऑप्शन होगा. प्रीमियर लीग से परिचित है, अनुभव है, और बोर्नमुथ को यूरोप तक लाने में उस का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा. सो लिवरपूल को चाहिए फ्रंट फुट, अग्रेसिव और अर्जेंट स्टाइल जो इराओला में है. लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर रिचर्ड ह्यूज ने ही इराओला को बोर्नमुथ के लिए साइन किया था. कोनाते को दुख है कि उसे लिवरपूल छोड़ना पड़ रहा है. सैडनेस ओवर लिवरपूल एग्जिट. इस बात की दुख है कि सही तरीके से लिवरपूल के फैंस को अलविदा नहीं कह पाया, जैसे रॉबर्टसन और साला का हुआ. उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाई, पर डील नहीं हुई. उसके वैल्यू और वेजेस को लेकर काफी प्रॉब्लम्स रहे. खिलाड़ियों की सैलरी के मामले में लिवरपूल काफी कंजूस है. वर्ल्ड कप तैयारी के लिए कल काफी फ्रेंडली मैच खेले गए. इक्वाडोर ने सऊदी अरेबिया को 2-1 से हराया. साउथ कोरिया 5, ट्रिनिदाद 0, मेक्सिको 1, ऑस्ट्रेलिया 0, जापान 1, आइसलैंड 0, स्विट्जरलैंड 4, जॉर्डन 1, चेक रिपब्लिक 2, कोसोवो 1, केप वर्दे 3, सर्बिया 0, पोलैंड 0, यूक्रेन 2. जर्मनी की आसान जीत, फिनलैंड पर 4-0 से. उंडव का डबल, वर्ड्स का एक गोल, मुसियाला ने भी स्कोर किया. यूएसए 3, सेनेगल 2, माने का डबल. ब्राजील 6, पनामा 2, इसमें विनिशियस जूनियर, काजेमिरो, रायान, लुकास पाकेटा, इगो च्वागो और दानिलो एक एक गोल स्कोर कर पाए. माचुस कुन्हा ने भी स्कोर किया, पर ऑन गोल. वर्ल्ड कप के लिए यूरुग्वे की टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्डर मैनुएल उगाते हैं, पर वेटरन स्ट्राइकर लुइस सुआरेज नहीं चुना गया. डार्विन नूनेज टीम में है. इंग्लैंड की टीम के 21 खिलाड़ी आज फ्लोरिडा पहुंच रहे हैं प्री टूर्नामेंट कैंप के लिए और 2 वार्म अप मैच. 2026 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को अपने कोच से बात करने के लिए रोका जाएगा, खासकर जब गोलकीपर टाइम आउट हो, गोलकीपर घायल हो. फीफा रेफरी चीफ केलुगी कोलिना ने बताया ये रूल रिवील की वार प्रोटोकॉल को लेकर भी नयापन लाए जाएंगे. इस पर चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप स्पेशल में थोड़ी देर बाद.

0: क्रिकेट IPL 2026 में फिर से चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लगातार दूसरा टाइटल रॉयल चैलेंजर्स ने जीता। फाइनल में 5 विकेट से RCB ने गुजरात टाइटंस को हराया। फिर से विराट कोहली की शानदार डैजलिंग बैटिंग पर RCB चैंपियन बनी। 25 बॉल्स हाफ सेंचुरी, फिर 75 नॉट आउट। टारगेट केवल 152 था। RCB की बॉलिंग भी घातक रही गुजरात टाइटंस के कमर तोड़ने में। गुजरात टाइटंस के कागिजो रबादा को पर्पल कप दिया गया, यानी मोस्ट विकेट्स। वैभव सूर्यवंशी के लिए 5 अवार्ड, कुल मिलाकर लगभग 70 लाख रुपए प्राइज मनी के रूप में। ऑरेंज कप जीता, सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले ऑरेंज कप दिया गया, और ये सम्मान जीतने वाला वो IPL में सबसे जवान खिलाड़ी हैं, यंगेस्ट प्लेयर टू विन ऑरेंज कप। इसके अलावा वैभव को इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी दिया गया। एक ही सीजन में दोनों अवार्ड जीतने वाला वो पहला खिलाड़ी है, वो भी केवल 15 साल का है। इतना ही नहीं, फिर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, IPL में रिकॉर्ड सिक्सेस और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जियो बिहार के लाला वैभव सूर्यवंशी जैसे जवान, निडर, जाबाज, मेहनती, विनम्र खिलाड़ी के लिए द स्काई इज नॉट द लिमिट। सो वर्ल्ड कप 2026 के लिए काउंटडाउन जारी है, बचे हैं केवल 10 दिन। वर्ल्ड कप स्पेशल में आज लेटेस्ट वर्ल्ड कप न्यूज के साथ मैच ऑफिशियल्स पर फोकस करेंगे 8:30 RM2 पर। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक, हैव अ वंडरफुल टाइम हमारे साथ।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपीएस सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावो, ला लुमिएर मॉडर्न प्री

0: bonne ziwa la mchela. Il formlen, nous gagnons qu'on beaucoup plus.
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: RM2.
3: Radio Musty.
4: And yes, a very good morning once again. I know आप लोग घर से निकलते ही कुछ दूर जाते ही भूल जाते हैं कि अरे हम कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल गए? मोबाइल लिया हमने, अच्छा खाना लिया हमने, अरे मम्मी ने टिफिन डाला है, नहीं खाया तो फिर उसके बाद हमें शाम को कुछ और खाना पड़ेगा, मम्मी की डांट है ना, ऐसा नहीं करना है। और वैसे भी मम्मी बड़े प्यार से आपके लिए आपका लंच तैयार करके भेजती हैं आपको, और मम्मी जो होती हैं सिर्फ मदर्स डे पे मम्मी को याद नहीं करते, मम्मी को रोज़ याद करते हैं, है ना। चलो इसी के साथ, इट्स अ ब्यूटीफुल लवली मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ जून, क्या बात है, क्या बात है। जो लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, बहुत स्पेशल होने वाला है। चलो अभी के लिए तो नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम रवि गिरधारी के लिए, उनको बहुत सारा प्यार है विकास की तरफ से, एंड बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, इट्स योर बर्थडे राइट, सो आपको हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर भाई रवि को बहुत सारा प्यार है और बाकी हमारे जितने भी डेडिकेशन हैं थोड़ी देर में, अभी फिलहाल बढ़ते हैं 8 बजे के समाचारों की ओर।
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
7: North, South,
8: 103.5.
7: East, West,
8: 96.4.
7: Center,
8: 99.4.
3: RM2
1: Radio Musty.
3: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
7: Radio Musty.
3: Feel the Musty.
4: Time check, सुबह के 8 बजे हैं।

नमस्ते पेशवा, भोजपुरी के समाचार। तटीय क्षेत्र के इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से जस्ती अच्छा तरीका से कौन प्रकार से बचावल जा सकी, मुद्दा परी समझी के फ्लिकॉन्फ्राक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार करल गल। शीर्षक रहल नू लाकुत नू लालवा। आम जनता, विशेषज्ञ लोग और अधिकारी लोग ब्लैक रिवर जिला खातिर ई पहला एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान देवे खातिर एकत्रित होलन जा। एक अंतर्गत नागरिक परामर्श होल, तटीय क्षेत्र से जुड़ल चुनौती के लिए जागरूकता बढ़ावल गल और समंदर तट, प्रवाल रेखा, नदी और तटीय समुदाय लोग के बेहतर संरक्षण खातिर सुझाव एकत्र करल गल। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग के रिकोस नामक इलाकाई परियोजना के हिस्सा है, जगर मकसद है इलाकाई देश में तटीय इकोसिस्टम जस्ती मजबूत करे के। बीच अथॉरिटी के अनुसार मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तट पर ही हर हफ्ता के 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा करल जाला। ब्लैक रिवर इलाका खातिर चलावल जाए होला संरक्षण कार्य योजना के आवत अगस्त महीना लिए अंतिम रूप देवल जाए और एक बाद ओकरा संबद्ध अधिकारी लोग के समक्ष प्रस्तुत करल जाए। परियोजना के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक चेरी लेबोयतों बोलेलन कि

0: ई अभियान ने देश के आर कई गो क्षेत्र ली बढ़ावल जाए। मॉरिशस के येलो फिन ट्यूना मच्छी के अतिरिक्त 500 टन की कोटा मिलल बाटे। 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन के 30वां बैठक के अंतर्गत मॉरिशस के 2027 खातिर येलो फिन ट्यूना की पकड़ खातिर निर्धारित कोटा में 500 टन के वृद्धि मिलल बा। ई मत्स्य उद्योग खातिर एगो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाता, जेकर से रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधि और ब्लू इकोनॉमी के विकास के लाभ पहुँचे की उम्मीद है। एकर संगे ही इलाकाई स्तर पर ही मत्स्य गतिविधि के संचालन करे होला सब संस्था के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति आर मजबूत होई। भू राजनीतिक अनिश्चितता आर वैश्विक सप्लाई चेन पर ही मंडरावे होला खतरा के ध्यान में रख के हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देश लोग के ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करे खातिर नवा रणनीति पर ही विचार करता। संभावित विकल्प में से एगो है इलाकाई द्वीप सब द्वीप के आवश्यकता होला महत्वपूर्ण पैदावार खातिर एगो संयुक्त खरीद प्रणाली स्थापित करेगी। एकर संगे ही आईओसी रिन्यूएबल ऊर्जा के देने संक्रमण के गति देवे खातिर जापानी विशेषज्ञता की मांग करता। मध्य पूर्व में तनाव आर वैश्विक तेल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभावे होला हॉर्मुज जल मार्ग के लेके चलल चिंता के बीच ई विकल्प पर ही विचार करल जाता। गल सुख के कोदाम आउट सेंटर में एगो गोष्ठी के आयोजन करल गल। एकर अंतर्गत इलाकाई स्तर पर ही ईंधन के आपूर्ति के साधन मजबूत करे के मुद्दा पर ही चर्चा करल गल। और दूसर देश के खबर में म्यांमार के एगो गांव में काल पेश आल एगो भयानक धमाका में कम से कम 55 जना की मौत होल बाटे और दर्जनों अन्य घायल होल हवन जा। ये गांव चीन के सीमा से सटल एगो विवादास्पद इलाका में बाटे। मरे होला लोग में 25 गो महिला लोग और 30 गो पुरुष लोग शामिल हवन जा। ये लोग खान में काम कर रहे होला कर्मचारी हवन जा। तय रहल भोजपुरी के समाचार थोड़ा घड़ी में मनी के खबर सुनर जा।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning beat. A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musty in the mix.

0: ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, आराम से सुबह के 8:08 ही हुए हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे उड़ने का तो मन हमारा भी करता है, काश हमारे पर होते हम उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाती मैं, पर यहाँ पे थोड़ी ना बैठती, फड़फड़ाती रहती स्टूडियो में बाहर जाने के लिए, इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं, कोई बात नहीं, हम तो हैं ही ऑन एयर। जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए लेकर आते हैं मस्त गाने, क्योंकि ये है आपका रेडियो मस्ती वरिता आपके साथ इन योर मॉर्निंग बीट। चलिए भाई, हर एक बीट पे आप को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके चेहरे पर स्माइल आए, और थोड़ा सा स्माइल किया कि नहीं किया, नहीं किया ना, भूल गए, आज 1 जून है, पहले तो ये करना चाहिए था आपको, अपनी मॉर्निंग की शुरुआत स्माइल के साथ करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मिस कर दिया तो नाउ यू कैन गिव मी योर स्वीट स्माइल। चलो बोलो चीज, पनीर भी बोल सकते हो, पनीर भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, चीज नहीं तो पनीर सही। चलो हम और आप साथ में हैं, साथ रहेंगे हम 9 तक। दिस इज विनीता विद यू, और आपके मैसेजेस मैं वेट कर रही हूँ 5491294 पर। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, अभी मौसम का हाल जानना है, सुबह बारिश हो रही थी ना, पता है दिन भर कैसे मौसम रहने वाला है, तो अदिति से मिलते हैं, जानते हैं मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू विनर्स।
4: आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं, पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह बादल घिरे रह सकते हैं, पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाली इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी, आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादल पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाली इलाकों को प्रभावित करेंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा, दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, petites attentions, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. Les tasses maman et papa à 149,95 € et le coffret déodorant et eau toilette Ulrich de Varence à 459,95 €. Pas oublié, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papa, merci.
6: On est tous winners!
1: Welcome to RM2.
7: आता है मुझको प्यार में जल जाना.
2: It's all day long. Bollywood hits music.
8: Check this out.
2: Radio Musti. Radio Musti. Feel the musti.
9: Nimura, nimura, nimura.
8: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
1: RM2.
2: Radio Musti.

0: défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है, बड़ों की आदर करो, छोटों से प्यार करो, सबको इज्जत दो, दूसरों की रेस्पेक्ट करो, लेकिन इतनी भी मत दो कि लोग तुम्हारी वैल्यू

0: ये भूल जाएं। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, क्योंकि जो चीज़ हमेशा फ्री में मिलती है ना, उसकी कदर अक्सर कम हो जाती है। मतलब कई बार हम लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस को बिना सोचे पूरा करते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग इस काइंडनेस को अप्रिशिएट करने के बजाय उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। सो डोंट लेट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब यही होता है ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता, कभी ना कहना भी ज़रूरी होता है। अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों पर इन्वेस्ट करो जो उसकी वैल्यू समझते हैं। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, हेल्दी है। Being kind doesn't mean being available for everyone all the time. Your time, your effort and your emotions are valuable. Apni value pehchano, jab tum khud ko importance doge tabhi duniya bhi tumhari importance samjhegi. So don't let people take you for granted.
1: Avant le défi, the long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: Morning Beat.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

0: रंग आशिकी गहरा हुआ लेकिन जब नींद गहरी होती है ना तो सुबह ठंडे ठंडे मौसम में उठना बड़ा मुश्किल होता है भाई।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अरे भाई मॉर्निंग मॉर्निंग में इस टाइम पे बहुत सारे लोग अभी गाड़ी में भी ट्रैफिक में फंसे होंगे और सोच रहे होंगे कि जैसे ऑफिस जाएंगे सबसे पहले मम्मी ने जो ब्रेड डाला है उसको खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। पता है हम में से कितने सारे लोग हैं जो पहचान नहीं पाते हैं कि हमारी मम्मी के किचन में कितना सारा कुछ है। और पता है खाने के साथ ही आप अपनी पूरी बॉडी को बदल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो बात बात पर फीवर होने लगता है, अरे तो कोकोनट पानी पिया करो। अगर आपको पता है कि अभी जो है विंटर शुरू हो रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको खांसी शुरू हो जाती है, सो यू कैन ईट पाइनएप्पल, बहुत अच्छा होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वेलिंग या पेन होने लगता है तो क्या करना चाहिए, यू कैन हैव टर्मरिक, जी हाँ गोल्डन मिल्क जिसे कहते हैं, मम्मी को बोलो गोल्डन मिल्क बना दे आपके लिए, टर्मरिक वाला मिल्क बना दे, रात को सोने से पहले पी लो, उसमें थोड़ा सा आप शहद भी डाल दो, बहुत अच्छी नींद आती है इससे, पता है ना। नोज ब्लॉक हो जाते हैं विंटर में, सो यू कैन हैव पेपरमिंट टी, और अगर आपका स्टमक हर्ट करता है यू कैन ईट पपाया, लेकिन कहते हैं ना जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं खाना चाहिए। अब ये भी हैं कि जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको कैरेट खाना चाहिए, तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सर्दी के मौसम में ये साइनस की प्रॉब्लम होने लगती है, सो यू नीड टू ईट गार्लिक। मॉर्निंग में एक गार्लिक लो, उसको कट कट कट कट कट कट करो और पानी के साथ निकल जाओ। मुझसे तो चबाया नहीं जाता गार्लिक, कर वो कच्चा गार्लिक दांतों के नीचे। हाँ कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं उसको हनी के साथ मिक्स करके खा लेते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जॉइंट्स में भी काफ़ी पेन होता है ना तो वॉलनट खाया करो भाई, स्किन ड्राई हो जाता है तो एवोकाडो है खाया खाया, जो हाथ में लग गया उसको चेहरे पे लगाए और ड्राइनेस दूर हो जाती है। टायर्ड हो तो डेट्स खाया करो और नींद नहीं आती तो कीवी खाया करो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने में, अगर आप परहेज करेंगे खाने में, अगर आप सच्ची हेल्दी खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और विंटर में बीमार भी नहीं और करोगे। चलो इसी के साथ यही कहूँगी कि भाई अगर नहा धो लिए तो थोड़ा सा अभी इतना सब कुछ कहाँ है खा लिया करो, और नहाने के बाद थोड़ा सा इत्र लगा लिया करो, बाहर जाओगे अच्छी स्मेल आएगी और लोग आपके अगल बगल में भी परेशान नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: आलू का या गोभी का?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अरे भाई मॉर्निंग में अब पराठा बात करोगे तो मुझे पराठा ही तो आएगा। कितने टाइम से बैठे हम आपके साथ, आपका ब्रेकफास्ट वैसे हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो करना चाहिए, मॉर्निंग में अच्छे से आपको खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मॉर्निंग की शुरुआत कम से कम फ्रूट जूस के साथ करो, फ्रूट के साथ करो। एक एप्पल खा सकते हो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नहीं डॉक्टर बाबू, मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, आपकी बीवी खा सकती है, इसका मतलब थोड़ी ना, इससे कहते हैं बीमारी दूर करना। ये इन लोगों ने बहुत बुरा बना दिया, मैं डॉक्टर को बुरा बना दिया इसमें, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वो बेचारा अपनी पत्नी से कैसे दूर रहेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस की ओर। यस वी हैव रोशनी सेलिब्रेटिंग हर 50th बर्थडे फ्रॉम संगीता, हरिप्रिया, धनिष्ठा, वर्षाना, कौंथेया, डारमैन, रोहन, नक्श, विहान, वी हैव योवान, कामिनी, सर्वेश, जीतन, हरिर एंड बदारू फैमिली विशिंग यू अ ग्रेट बर्थडे। और चलिए इसी के साथ विश कर रहे हैं चाची को वेरी हैप्पी बर्थडे। अब चाची का नाम है लीना, वो रहती है कैटरबोन, स्पेशली उनकी नीस सानवी, सिस्टर नौ पूजा, विदुला, हस्बैंड नवीन, उनके बच्चे हैं श्रुति एंड कृष्णा, उनको बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार है। ऑलराइट, यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है डेडिकेट करते हैं ललित के लिए, जो कि है फ्रॉम यूएसए से। थैंक यू सो मच। एंड मैसेज है प्रवीणा और प्रवेशा, दो जुड़वा बहनें हैं, इनका बर्थडे है। सो आशना जवाहर की तरफ से हैप्पी बर्थडे आपको। एंड यहाँ पर मामा प्रेमिला इतवारू का भी बर्थडे, उनकी बेटी दिया और वर्षी पल्लवी, सुखिया फैमिली, उनकी फ्रेंड टिंकू की तरफ से लव यू मामा उन्होंने भेजा है। चलो जी, हर हर महादेव। मिसेस किरण है काथोसिया से, कहती है आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो ऐसे में नेक्स्ट गाना मामा कमला जो पुतोदो विलेज रहती हैं उनको गाना डेडिकेट कर दो। और आपने कहा शुभ दिन आपको, हमारी ओर से भी आपको शुभ दिन जी।
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: सुबह के 8:40 1st of June मंडे का दिन है। चलो भाई, हर हर महादेव एंड हैप्पी बर्थडे जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें आज।

0: उलू ले भाई, हमने तो तम्मा तम्मा ले लिया, उलू क्यों ले भाई।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो जिंदगी को इतना भी सीरियसली मत लो मेरे दोस्त। सीरियसली क्या लेना, आपको तो पता ही है कि हम सब कोशिश करते हैं कि लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, और कोशिश हमारी तभी कामयाब होती है जब हम सारे स्ट्रेस को भूल जाते हैं। और स्ट्रेस को भगाना एक ही मतलब होता है हमारा, कि स्ट्रेस को भगाने के लिए म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए। जब म्यूज़िक सीधे कानों से जाते हुए हमारे दिल तक पहुंचता है तो जो चेहरे पे स्माइल आती है ना, इसी से हमारा स्ट्रेस दूर होता है ना भाई। कुछ भी कर लो, लाइफ में जो होना है होता ही रहता है। जैसे कि हम लोग बहुत सपने देखते हैं, आपको पता है कि सैलरी आने से पहले हम क्या क्या सोचते हैं, सैलरी आती है लेकिन फाइनली बिल्स उसे उठा के ले ही जाती है। हाँ जी, लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि गुड मॉर्निंग का मैसेज आपको शाम को मिलता है, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। चलो तो इसी के साथ, मॉर्निंग बिजी हो या आपका नेटवर्क बिजी हो, लेकिन हम इतना बिजी नहीं है कि आपके साथ प्यार के दो पल ना बांट सके। हमारा साथ रहेगा आपकी, आपके साथ हम हैं 9 बजे तक। कि हो क्या रहा है? नहीं, मैं घड़ी देख रही थी यार, अभी 12 मिनट में मुझे जाना है। क्यों?
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2
2: Radio Musti.
0: वही मैं सोच रही थी, मेरा दिल धक धक करने के बजाय चूचें चूचें क्यों कर रहा है।

0: के दिल कर तू जै तू जै जै के दिल कर तू जै तू जै जै
1: For your morning show, RM2
2: Radio Musty.
3: ये कमाल हो गया, दिल करी चू छे चू छे छे।
4: ये तो गाड़ी में से बात आती है जब वो पत्थरों से निकलती है। तुम्हारा भी सफर काफी कठिन रहा लग रहा है।
3: नहीं, मैं सोच रही थी कि दिल चूचे कैसे कर सकता है, हो ही नहीं सकता। बाय द वे, विकास आ गया है और विकास बाहर का जो नजारा है जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे हमारे लिए प्लीज।
5: तो देखो, ऊपर थोड़ा बादल है और उसके बीच में थोड़ा सा रोशनी आता है,
3: थोड़ा आता है
5: बाकी फंस जाता है।
3: ओह माय गॉड, नो।
4: हां सर जी, लेकिन मौसम कुछ ऐसा ही, सुबह से थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद एकदम से बादल एंड थोड़ी सी धूप। प्रकृति का हर दिन कोई नया रूप, लेकिन मजा आया, वेरी नाइस। 19 degrees, अच्छी ठंडी हवा, थोड़ा सा शीशा डाउन करो, नहीं ठंड है, ऊपर चढ़ा दो, ऐसे गेम खेलते ऊपर नीचे।
3: रात को भी सोने में बड़ा मजा आता है।
4: ये भी बस सुबह उठने का मतलब पूछो, बाकी सब ठीक है। Hey, first of June.
3: Oh my God, first of June. देखो, नया महीना शुरू हो गया and it's a Monday.
4: मैं कहता हूँ कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, और अपनी खुशी में खुश रहो, खून बढ़ाते रहो, बढ़ाओ अपना खून। पहली जून, नमस्ते, हेलो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ।
3: Alright, विकास, तो थोड़ी देर में विकास से मुलाकात होगी, जबकि मैं विनीता अब आपसे मिलूंगी कल मॉर्निंग में 7 बजे आ जाऊंगी उठाने और बहुत सारे गाने लेकर आऊंगी। अपना ख्याल रखना, जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, और जो लोग ऐसे ही हमें याद करें थैंक यू, हैव अ गुड डे।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: चलो वर्ल्ड कप की ओर। आज से जून महीना शुरू, जून 2026 मतलब वर्ल्ड कप का महीना। 11 जून से 19 जुलाई तक का, आज से 10 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू। वर्ल्ड कप स्पेशल में आज मैच ऑफिशियल्स पर फोकस करेंगे और एक दो लेटेस्ट न्यूज। सो वर्ल्ड कप फाइनल्स के मैच ऑफिशियल्स बहुत मेहनत करके, बहुत एक्सपीरियंस लेकर यहां आते हैं, चुने जाते हैं। इस बार 170 मैच ऑफिशियल्स चुने गए हैं। इनमें 52 रेफरीज, 88 असिस्टेंट रेफरीज और 30 वार ऑफिशियल्स, ये लोग 104 मैचों में काम करेंगे। यूरोप से 15 रेफरीज, साउथ अमेरिका से 11, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका से 12, एशिया से 7, अफ्रीका से 7 और ओशियाना से 2 रेफरी। 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का रेफरी पोलैंड से जिमोन मासिन्याच लिस्ट में है। एक महिला रेफरी भी है, यूएसए की टोरी पेंसो। इंग्लैंड से माइकल

0: ओलिवर और एंटोनी टेलर। मॉरिशस से इस बार कोई नहीं है, अभी तक केवल दो मॉरिशियंस वर्ल्ड कप में रेफरी रहे। पहला सिडनी पिको 1986 वर्ल्ड कप में एक मैच ऑफिशिएट कर पाया था, फिर आले लिम की चोंग दो वर्ल्ड कप में भाग ले पाया था, 1994 यूएसए में ब्राजील वर्सेस रशिया वाला मैच, फिर 1998 में फ्रांस में रोमेनिया कोलंबिया वाले मैच का सुपरविजन उसे दिया गया था। उसके बाद आले लिम की चोंग फीफा रेफरी असेसर रहा 2018 वर्ल्ड कप में। फाइनल्स में नहीं है पर अफ्रीकी क्वालिफिकेशन राउंड में पैट्रिस मिलाजा, अहमद इरालाल, मारिया रिवर मैच रेफरी रहे। और टाइम आउट, कुछ और खबरें इस वर्ल्ड कप को लेकर। रेफरिंग की बात हुई तो कल की जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड मीटिंग लगी उसमें कई नियमों, कई रूल चेंजेस अनाउंस किए गए। थ्रो इन्स यानी आउट और गोल किक के लिए 5 सेकंड काउंटडाउन। खिलाड़ियों के बीच कन्फ्रंटेशंस या हाथापाई के दौरान अगर कोई खिलाड़ी अपने मुंह को हाथ या टी शर्ट से ढक के उस कवरिंग देयर माउथ, सीधे रेड कार्ड। प्रोटेस्ट पर अगर टीम वॉक ऑफ करे तो पनिशमेंट। मैंडेटोरी 1 मिनट पीरियड का मैदान के बाहर का इलाज। सेकंड येलो कार्ड दिए जाने पर वार इंटरवीन कर सकेगा। फ्री किक या कोर्नर लेने से पहले अगर कोई खिलाड़ी को ब्लॉक किया जाए तो रेफरी सैंक्शन कर सकेगा। और टाइम आउट के दौरान खासकर जब कोई गोलकीपर घायल हो तब किसी भी खिलाड़ी को टेक्निकल एरिया में जाके कोच से बात करने की अनुमति नहीं है। मतलब इस बार रेफरी बहुत सख्त होंगे। पियर्लुइगी कोलिना रेफरी तो नहीं है लेकिन उसका स्टाइल जो है वो इन दिनों रेफरी एसोसिएशन के इंचार्ज हैं, वहां रोल निभा रहे हैं इंचार्ज का। सो वर्ल्ड कप स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। देते रहेंगे और खबरें द लेटेस्ट न्यूज वर्ल्ड कप के बारे में। आज रेफरीज के बारे में बात की। अ बिग सल्यूट टू ऑल दोज मैच ऑफिशियल्स जिनका काम आसान नहीं होता। शापो आवू मिस्यू।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

0: गुड मॉर्निंग आप सभी को. टाइम चेक, इट्स 9 AM और अभी थोड़ी देर में सुन पाएंगे हम संक्षिप्त समाचार. साथ जुड़े रहिए.
1: संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको.
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया. शीर्षक रहा नुलाकोत नुलालवा. आम जनता, विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए इस पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए. इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श, तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा साथ ही समंदर तटों, प्रवाल रेखाओं, नदियों और तटीय समंदरों और समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्र किए गए. ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रिकोस नामक परियोजना का हिस्सा है. इसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना. मॉरिशस को येलो फिन ट्यूना मछली के अतिरिक्त 500 टन का कोटा प्राप्त हुआ है. 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलो फिन ट्यूना की पकड़ के वास्ते निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है. ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमी के विकास को लाभ पहुंचने की उम्मीद है. साथ ही इलाकाई स्तर पर मत्स्य गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति और मजबूत होगी. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीति

0: स्थितियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कुदांग और सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर गौर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की। 780 से ज्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया और 220 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवा काफी हद तक बाधित हुई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
2: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey, good morning, Norbert ke 6 minute and yes, it's the 1st of June. Oh, 1st of June. काफी लोग इसमें खुश हो जाते हैं, वैसे अच्छी बात है. वैसे दिन की शुरुआत भी ऐसी होती है, नंबर वन से. यानी कि धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़ते हैं, जो भी मंजिल है उसके पास पहुंचते हैं. लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, जिंदगी इसी का नाम है. वही इस वीकेंड में इतनी सारी हलचल, जहाँ पर चैंपियंस लीग, वहीं पर वर्ल्ड कप बहुत करीब आता हुआ, वहीं पर कुछ ऐसे मैनेजर जिनको सैक कर दिया गया है. कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा. अच्छी बात यह है कि सपोर्टर्स एंड फैंस लगे हुए हैं, जरूरी है. फिर चाहे म्यूजिक को सपोर्ट करते हो, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हो, हम हैं आपके लिए म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स बेस्ट मिक्स. और अभी ले चलते हैं अगले गाने की तरफ. इस घंटे में ऑन द मेन्यू बहुत सारी बातें हैं भाई. घर पे भी जाएंगे और साथ साथ में कुछ लेकर भी आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स. बी टाउन से भी गर्मा गर्म खबरें.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए पहले जून और देख लेते हैं सितारे क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई आपकी जो मेहनत है वो लगन जो है वो ऑफिस में सबका ध्यान खींचेगी। बॉस आपके काम से इतने प्रभावित रहेंगे कि प्रमोशन को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। सहयोग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में थोड़ा सतर्क होना जरूरी है क्योंकि छोटी सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। कुछ छुपे हुए लोग हैं जो काम नहीं करने देते, इसलिए हरदम कदम सोच समझ कर बढ़ाएं।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज का दिन धन और खुशियों की बरसात लेकर आएगा। ओए ओए ओए, रुका हुआ पैसा वापस मिलने से मन हल्का और प्रसन्न हो सकता है। बिजनेस में नई योजनाएं उस पर निवेश करना भविष्य में शानदार लाभ दे सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए अच्छे संकेत बन रहे हैं।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: मिथुन राशि, आज का दिन सामान्य लेकिन संतुलित बैलेंस रहने वाला है। परिवार में किया हुआ कोई पुराना वादा पूरा करने का समय आ गया है। लंबे समय बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन बातों ही बातों में ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा खा जाएं, कुछ ऐसा बोल जाएं कि लगे कि मन को ठेस पहुंच गई। कभी कभी वो जाए कि वो गुस्से के घूंट पी गए या फिर कुछ ऐसी बात कहेगी जो दूसरा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। थोड़ा सोच समझ कर।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज आपका जो मान सम्मान है और प्रभाव दोनों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से कहा सुनी होने की संभावना, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। पिताजी से कोई बात कहने पर उनको चुप सकती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर। जल्दबाजी और भावुकता में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है।
2: लियो सिंह राशि।
1: जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो। वैसे तो पॉजिटिविटी है और स्टूडेंट हैं तो मानसिक तनाव और पढ़ाई के दबाव से राहत मिलने वाली है। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है जहां पर नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से बचे वरना परेशानी बढ़ सकती है।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: भाई प्रॉपर्टी और बिजनेस से जुड़े मामले में किस्मत आपका साथ देगी। किसी बड़ी डील को लेकर कोई इम्पोर्टेंट कदम आप उठा सकते हैं। खास लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकारी नौकरी की

0: तैयारी जो कर रहे हैं लोग, उनमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बेहद खास रहने वाला दिन है। मनपसंद काम मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा और भाई बहन का सहयोग भी आपको मजबूती देगा। वैसे सदस्यों के साथ, जो घर के सदस्य हैं उनके साथ बिताया गया समय आपकी कई परेशानियों का समाधान निकाल सकता है, इसलिए बातचीत करें अपनों से।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आसपास का माहौल खुशनुमा रहने वाला है, आपके चेहरे की चमक सबका ध्यान खींच लेगी। चमक रहे हो, जीवन साथी नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं, इसलिए बातचीत में समझदारी रखें। शेयर मार्केट में बिना एक्सपर्ट एडवाइस के निवेश करना भारी पड़ सकता है। बिजनेस की परेशानियों को लेकर आपने जो चर्चा की थी, समाधान मिलने की संभावना है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: भैया आज का दिन खास रहने वाला है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए कुछ नए रास्ते खोल सकती है। आसपास के जो लोग हैं ना, उनको पहचानिए फिर आगे बढ़िए। हर कोई मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। सिंगल लोगों को अच्छा कोई समाचार मिल सकता है। जीवन में कोई प्यार की एंट्री हो सकती है। नॉक नॉक, जस्ट लुक एट द क्लॉक, 23:09 द मॉर्निंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज का दिन दोस्तों और अपनों के साथ हंसी मजाक और मौज मस्ती में बीतने वाला है। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मन में ईर्ष्या या फिर द्वेष जैसी भावनाएं ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, मन साफ रहता है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज का दिन आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने वाला दिन है। सेहत को नजरअंदाज ना करें, नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए शरीर के संकेत जो आपको मिल रहे हैं उनको समझें। किसी रिश्तेदार की बात को लेकर दिल पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन फैमिली है, परिवार है, मिल बैठकर बहुत सारी बातें हो सकती है। उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। नहीं
1: Pisces,
0: मीन राशि। Last but not least, Pisces, आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो सोच है, दूसरों से आगे लेकर जाएगी आपको। नई नौकरी या बेहतर अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। मन भगवान की भक्ति और उनकी प्रार्थना में डूबा रहेगा। हालांकि संतान के करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता बन सकती है। घर में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा, थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, बजट को भी देख लीजिए।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Masti.
3: Radio Masti.
2: Your life is not complete until you have a little Masti in your life. Radio Masti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: और आपको कुछ मैसेजेस आते हुए गुड मॉर्निंग आपको भी, और कहते हैं कि इस सुबह की जो ठंड है ना उससे कान हो जाते हैं बंद हैं, इसलिए क्योंकि वो स्नूज बटन बार बार दबाकर थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ी सी नींद कुछ ऐसा ही असर आप पर भी हो रहा है क्या? चलिए वहीं पर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एंड साथ दे रही हैं चांद रिबेका हमारा, और कहते हैं प्लीज विदुरा के लिए, लोलिता के लिए एंड एनी के लिए भी नमस्कार जी, प्यार से गाना फॉर ऑल दोज हु लिसनिंग इन, एंड विद्यावती जी आपको भी हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली आज आर माधवन का भी बर्थडे है, रहना है तेरे दिल में, क्या कमाल के गाने थे। वहीं पर हम कहें अगर कि आज के ज़माने में अच्छा उनका एक सीरीज चल रही थी डीकपल्ड, आपने देखी क्या? नहीं वो भी बहुत ही कमाल, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। वैसे तो शैतान के अंदर आए कुछ अलग ही साल के अंदर, किसी ने सोचा नहीं था कि वो ये भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड। और यहाँ पर रेखा जी गुड मॉर्निंग आपको भी, एंड कहते हैं कि बस जानना चाहेंगे कि आज क्या है हाउस होल्ड डेकोरेशन टिप, तो बस थोड़ी देर में लेकर आने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड। You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

अच्छा हमें भी बता दें कि बॉबी देओल पहले जब वी मेट में होने वाले थे यानी करीना कपूर के साथ, और फिर ये बात नहीं बन पाई, नींद टूटी और कहा कि अरे कोई तो है जो सो रहा है।

0: to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बॉबी देओल कहते हैं कि मैं अब वक्त के साथ एक बेहतर इंसान बन गया हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखा मैंने। अनुराग कश्यप का ये थ्रिलर जो है बंदर, उसमें एक्टर बॉबी देओल एक ऐसे स्टार का रोल निभा रहे हैं जिसमें उनका करियर ढलान पर है और ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने ही वाली है। बॉबी देओल की असल जिंदगी के करियर से ये रोल काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि अगर बात करें उनकी तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पर लोग उनको नहीं ले रहे थे, या फिर एनिमल के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में एक चुनौती भरे दौर से बहुत कुछ सीखा है, नफरत गुस्से का इस्तेमाल करके एक बेहतर एक्टर बनने के लिए अपने आप को तैयार किया है। वैसे कहते हैं कि एक बुरे दौर में एक बड़ा झटका तब लगा जब इम्तियाज अली की 2007 की मशहूर रोमांटिक फिल्म जब वी मेट में शाहिद कपूर ने उनको रिप्लेस कर दिया। हालांकि बॉबी ने इम्तियाज और करीना कपूर को फिल्म के लिए राजी कर लिया था और प्रोडक्शन हाउस को फिल्म की पेशकश कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि बैनर ने उन्हें एक एक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ओह नो, सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन उन्हें हौसला नहीं हारा। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और फिर देखिए साहब, एनिमल के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वैसे कहते हैं कि जब मैंने फिल्म का रफ कट देखा तो काफ़ी खुश हो गया था शुरू में, लेकिन बाद में जब सब चेंज हो गया तो समझ नहीं आ गया करें क्या। दर्द और गुस्सा झेला, लेकिन बाद में चीज़ें बेहतर होती गई और ये दिखेंगे मेरे ख्याल से बंदर के अंदर दिखेंगे बार फिर से बी टाउन के हमारे उभरते सितारे। अब कह सकते हैं बार फिर से विद वापसी।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Well, good morning, time check. Exactly 10 a.m. स्टूडियो में आगे उनसे मिलते हैं, जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस को येलोफिन ट्यूना मछली के अतिरिक्त 500 टन का कोटा प्राप्त हुआ है। 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलोफिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमी के विकास को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इलाकाई स्तर पर मत्स्य गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति और मजबूत होगी। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कुदा ऑथ सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस की सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसे संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी लेबोयतों कहते हैं कि ये अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की है। 780 से ज़्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है और 220 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवा काफी हद तक बाधित हुई। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड रेन्यू मोगल गुडलैंड्स में 74 साल के 74 years old श्री इंदर

0: नातू, श्री इंद्रदेव नातू जो राकेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती किसनावती नातू के मकान रॉयल रोड गई न्यू मॉल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अडोल्फ स्ट्रीट गोम्बा में 44 साल की 44 years old की मिसेस बीबी वाहिदा मोमिन कोरिम्बकस, पिताजी नाम करिम्बकस जो वाहिदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे इनके शोहर मोहम्मद रियाद खान करिम्बकस की मकान अडोल्फ स्ट्रीट गोम्बा से उठाकर दफनाने के लिए गोम्बा का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। क्वीन एलिजाबेथ रोड सिचेमिल थ्रियोले में 82 साल के 82 years old श्री हरिदेव तापसी जो गुरुजी तापसी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे के मकान क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थेमिनियस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अभी गाना काफी कर रहा है लोगों को दीवाना. वी टॉकिंग अबाउट कॉकटेल टू. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का. फर्स्ट जून, ये है सेकंड आवर मस्ट मॉर्निंग शो. जब बॉलीवुड की तो बात होती होती है, लेकिन काफी अटेंशन मिल रहा है इस मूवी को. वी टॉकिंग अबाउट कॉकटेल टू. शाहिद ने अभी अभी डाली है एक फोटो जिसमें रश्मिका मंदाना और कृति सानन कुछ बिहाइंड द कैमरा सीन्स. बहुत ही कमाल का ग्लिम्स है और एक प्रमोशनल जर्नी चल रही है इस मूवी की. राइट, अभी जो पोस्ट आई उसमें छोटा सा इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन शाहिद एंड रश्मिका, क्रिएटिंग अ डिस्कशन ऑनलाइन. म्यूजिक लॉन्च है कॉकटेल टू का मुंबई के अंदर और दोनों एक्टर दिखते हैं अपनी मस्ती के अंदर. बहुत कुछ है बताने के लिए. जी अभी तो शुरुआत है, हुई मुलाकात है, ट्रेलर है, पूरी मूवी है बाकी.
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, जैसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, धीरे धीरे वो पेड़ में बदलते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ जो वक्त आप स्पेंड करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जिस तरह सिचुएशन को संभालते हैं, वो बहुत मैटर करती है आने वाले टाइम के अंदर। बिना जजमेंट के बच्चों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, बिना जजमेंट के, यानी उनको टोक टाक के बिना आलोचना या फिर एकदम से कोई रिजल्ट ना निकालते हुए उनकी बातें सुने, तो बच्चे खुलकर अपनी भावनाएं आपको व्यक्त कर पाएंगे। इससे उनसे महसूस होता है कि उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है और जो वो कह रहे हैं उसको समझा जा रहा है, सुरक्षित इमोशनली वो महसूस करते हैं। इसलिए ज़रूरी है उनसे सेल्फ डिसिप्लिन लाने की बात कीजिए। ज़रूरी है कि जो भी करें उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होनी बहुत ज़रूरी है कि वो डिसीजन लें कि कब क्या करना है। और वैसे कहते हैं कि प्यार भी ऐसा करें बच्चों के साथ जो बिना किसी शर्त के हो, तो बच्चे भी उसको अहमियत देंगे, समझेंगे गहराई से, नहीं तो उनको लगेगा कि हाँ जब वो अच्छा काम करते तभी उनको प्यार मिलता, नहीं तो हमेशा डांटना और बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो दिन में थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बच्चे परफेक्शन से ज़्यादा प्यार, अपनापन और साथ में बिताए गए पलों को याद करते हैं। और जब कोई बात हो जाए तो उन्हें सही तरह से एक हेल्दी तरीके से सुलझाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, बातचीत बंद ना करना, ओपन डायलॉग रखना और किसी से कंपेयर नहीं करना कि तुम तो ऐसे वो तो वैसा, तो हमेशा लगे कि मेरी आइडेंटिटी कहाँ पर है, ये सोचना ज़रूरी है। जहाँ एक्सपर्ट से जब बात हुई तो ये चीज़ें सामने आई और कहा कि बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसे सुलझे सहज तरीके से संभालें जब उनको भी लगे उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है और सीखने को कुछ मिल रहा है।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: अच्छा वो याद हो कि हमने शुरू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन, तो इसका फाइनल बस अब आने वाला है 7th of June यानी कि संडे के दिन शाम को 6 बजे के समाचार के बाद डायरेक्ट ऑन MBC 3, तो देखना ना भूलें और साथ में टीम्स को सपोर्ट करना ना भूलें। बड़ी मस्ती हुई थी, क्या क्या हुआ चलिए आप सब देख पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे वो कमाल के पल। तो बस रखिए याद 7th of June और होगा संडे का दिन समाचार के बाद ऑन MBC 3। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स।
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Fashion Tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: हर कोई फैशनेबल देखना चाहता है और अप टू डेट देखना चाहता है, अच्छा है, लेकिन ब्रांड से ज़्यादा ज़रूरी है फिटिंग। अच्छी फिटिंग वाला सिंपल आउटफिट भी एक्सपेंसिव और पॉलिश लगता है। वार्डरोब का असली सुपरस्टार फिटिंग ही होती है। सही बात है। वैसे कभी कभी कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कलर्स को एक साथ डाल लें। कलर के साथ जो मैचिंग होती है, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा रेनबो बनना है नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल कलर्स के साथ एक ब्राइट कलर अगर ऐसा ऐड किया तो बहुत ही कमाल लगता है। जैसे कि ब्लू स्कार्फ या फिर मरून बैग या मस्टर्ड जैकेट, सिंपल और स्टाइलिश दोनों। दिन भर की भागा दौड़ी, भाई डिपेंड करता है कि किसका काम कैसा है, और अगर दिन भर की भागा दौड़ी है तो कंफर्टेबल लोफर्स, स्नीकर्स या ब्लॉक हील्स, इनको चूज कर सकते हैं। फैशन वही जो कॉन्फिडेंस के साथ चल सके।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: Disco Never Dies.
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: डिस्को नेवर डाइज, और ये जो जीने की तमन्ना है ना, ये भी कभी मरनी नहीं चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और जिंदगी को

0: को सही मायने में बताइए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कितनी सच बात है ना। वैसे खुश रहना भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी टेंशन आप लेते हैं। भाई क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका कोई समाधान तो है नहीं। अगर आप समाधान ढूंढने निकल पड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो बस ये जो मुश्किल है ना, ये जो परेशानी है, ये करती रहेगी आपको हानि है। दिमाग में घूमते घूमते दिमाग के राउंड अबाउट पे गोल गोल गोल नहीं, गोल तो काफ़ी हो रहे हैं। वैसे अभी एकदम हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर से सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये सिलसिला चलता रहता है। नहीं, हमारा भी सिलसिला यूँ ही चलता है आपके साथ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजेस। आशा जी कहते हैं एंजॉइंग द सॉन्ग। वैसे कल मदर्स डे बहुत अच्छा रहा फैमिली के साथ। शुभम और साथ में त्रिबेका गए थे घूमने फिरने के लिए, अच्छी बात है। और मैं पर शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जानू, फैमिली सभी के लिए एंजॉय योर सेल्फ। ज़रूरी है घूमना फिरना, अच्छे मोमेंट्स बिताना फैमिली के साथ। और वहीं पर यहाँ पर पूजा है, कहती हैं गुड मॉर्निंग एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स, घर का काम करते करते। वेरी गुड है जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो गानों के साथ नाचना झूमना हो, ये हो या फिर गुनगुनाना, फैमिली के साथ वक्त बिताना या फिर खाना पकाना, जो भी कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढ लीजिए, फिर ज़िंदगी आपकी, ये पल आपका।
1: You're listening to Masti Mornings.
2: I'm a Karina kisi din wale pyar mundiyan to bach gaye.
3: Masti Morning Show.
1: Stay tuned. Stay Masti. Radio Masti.

for him too. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: You're listening to Radio Masti.
1: चाहे दूसरा घंटा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और थोड़ी देर में 11 बजे के संक्षिप्त समाचार। म्यूजिक काफी हो गया, अब थोड़ा गा भी दो भाई।

0: आदित्य आगे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कुदौन सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। कुदौन सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान 20 साल से ज्यादा की उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल से जुड़ी डे केयर फैसिलिटीज की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद हुए गैर सरकारी संगठनों, देखभाल करने वाले लोगों और अधिकारियों ने ज्यादा समावेशी, मानवीय और आत्मनिर्भरता उन्मुख समाज के हक में प्रस्ताव दिए। मकसद है दिव्यांग लोगों को समाज में बेहतर जगह दिलाना और उन्हें नौकरी की ज्यादा संभावनाएं उपलब्ध कराना। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले हफ्ते स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्टेटस प्रोग्राम का फाइनल लगा। ये पहल तृतीय शिक्षा मंत्रालय की रही। मकसद रहा छात्रों में नवाचार और ठेकेदारी के प्रति दिलचस्पी प्रोत्साहित करना। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रथम संस्करण में भाग लिया। 3 बेहतरीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए हैं। ये गाँव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थयोली में, क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थयोली में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड श्रीहरिदेव तापसी, श्रीहरिदेव तापसी जो गुरुजी तापसी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थे आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थयोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनिस थयोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: क्या पीपड़ी बजी है।
1: नमस्कार नमस्कार तेरे सजनों, स्वागत आप सभी का। भाई हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें
0: और दिल की बात दिल से कहें और जज्बाती है दिल। अरे साहब अगर हम दिया तो बाती तो आप ही हुए ना। राइट, इट्स ऑल अबाउट एंजॉयिंग द म्यूजिक इन वन सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि म्यूजिक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। थर्ड आवर इट्स योर।
2: You're listening to Masti Mornings.
3: Masti Morning Show.
2: Stay tuned. Stay musty. Radio Musti.
0: देसी की विदेशी

जी आपको भी और हमको भी। वैसे टेक की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ज़रूरी है कि अपने जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स है ना, उनको थोड़ा प्लग इन करके बस थोड़ा सा ब्राउज करके बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आपने उसको साइड में डाला हुआ है, नहीं तो फाइल्स लूज हो सकती हैं। जी हाँ, ये करना होगा हम दोनों को, सच बोल रहा हूँ। लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती पर मस्त मॉर्निंग शो, और जिसमें बताया कि कभी कभी आप ध्यान नहीं देते, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स पड़ी हुई साइड में, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे थे टाइम तक।

0: प्यार है, प्यार है, फाइनली हो ही जाता है प्यार एंड में ना, सब कुछ ही होता है बीट टाउन में, लेकिन बात करें अगर असल जिंदगी में तो ये फोन से भाई गॉड आपको कितना प्यार है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: अब बताएं कि अब आ गया मेटा एआई पेंडेंट, जी आपने सही सुना, यूजर्स के लिए एक नए एआई पावर्ड पेंडेंट पर काम किया जा रहा है। इसे यूजर्स अपने गले में पहन सकते हैं। एक लीक हुए इंटरनेट मेमो के अनुसार मेटा अगले साल पहनने वाले डिवाइस की टेस्टिंग शुरू कर सकती है। यानी कि आप सोचिए, गले में आपने इसको पहना हुआ है, नहीं पहनना चाहेंगे एक वेयरेबल डिवाइस जो कि सब कुछ सुन रहा है? अजीब सी बात है ना, लेकिन फिर आप जो भी अपने असिस्टेंट से बात करेंगे वो सब नोट करता जाएगा और आपको बेटर सर्विस देने के लिए बिल्कुल तैयार। ऑलराइट, वैसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, अभी उसको टेस्टिंग स्टेज में डाला गया कि कैसे इस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इसको यूज़ किया जाता है। अब आने वाले टाइम में हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि ये जो पेंडेंट है इसके जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब कुछ पहचान लेगा आपके बारे में, आपकी आदतों के बारे में, आपके स्टाइल, आपके मूड के बारे में, और फिर बिना कहे आप बन जाएंगे स्टूडेंट ऑफ द पेंडेंट।
2: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
2: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: नहीं मतलब पेंडेंट जो आपकी बातें सुन रहा है फिर फाइनली होगा क्या, यही होगा कि आप कितने टाइम मूड ऑफ करके रहे, कितने टाइम आप खुश रहे, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है उसको सुधार लो, ये कर लो वो कर लो, यानी कि आपके ऊपर बैठा है कोई टीचर। अरे क्या हम रेडी बनने के लिए फिर टीचर सोच लो बता दो।
1: You're listening to Masti Mornings. Masti Morning Show. Stay tuned. Stay musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे होता है कि कई कई जगहों पर एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं। हाँ जी, आप सभी का एग्जॉस्ट फैंस, और उसमें टाइम के साथ साथ मिट्टी चिपक जाती है और चिकनाई चिपक जाती है अगर किचन में है, और साधारण पानी या साबुन से रगड़ कर साफ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब एक सोल्यूशन आ गया है, एग्जॉस्ट फैन की पंखे पर जमा जो ग्रीस होती है उसको काटने के लिए तेल ही सबसे बड़ा काम करता है। या सही सुना, सोल्यूशन को बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लें और उसमें बराबर मात्रा में क्वांटिटी में नारियल का तेल ले लें, ऑलिव ऑयल नारियल का तेल। तीसरी चीज़ यानी कि थोड़ा सा विनेगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और बस याद रखें ये जो बन चुका है सोल्यूशन, ये जो चिकनाई होती है ना उसके लेयर्स को ढीला करने में बेहद असरदार है। बस को आप या तो स्प्रे बॉटल में लेकर सीधा पंखे पर, हाँ लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पहले वो फ़ैन है ना उसको इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है उसको हटा लें, उसमें करंट नहीं होना चाहिए, और आप उसको धीरे धीरे स्प्रे करें उसके फ़ैन के ऊपर, और देखिए साहब कुछ 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दें, जो ग्रीस है वो पूरी तरह से सोख कर नरम कर देगी। फिर साफ़ करना बहुत ही आसान, एक कपड़े के साथ, एक शिफों के साथ, और उसके बाद देखिए साहब सब कुछ कमाल। चीज़ों को आसपास साफ रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार अगली बार फिर से गंदा होगा, तो सोल्यूशन तो मेरे पास ही है।

0: कुछ फन होगा इस मूवी में ना, कमाल। अरे गाना बजा रे, बीच में सुना मैंने, आप भी स्टाइल में है तो चलने दो। ओ यस, यू आर लिसनिंग टू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक राइट हियर।
1: You're listening to Musty Mornings.
2: Must Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: चलिए म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पर हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे एंड दिस वन गोज आउट स्पेशली टू सूरज साहब, ये प्रिया की तरफ से, डॉटर देवीना एंड सन अंबी सेन की तरफ से 59 years old and 60 माने से पहले कुछ ऐसा करें कि दिल भी बहले, पार्टी ऐसी कि आहा।
1: You're listening to RM2, a radio musty.
0: जय साहब, जहाँ पर पार्टी की बात हुई तो मैं कल्टी मारता हूँ और आने वाली थोड़ी देर में मनीषमा लेकर रेट्रो रिदम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड कमाल की पेशकश, तैयार हो जाइए। एनी बार फिर से टू ऑल द वन सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, यू शेयरिंग अ बर्थडे विद माधवन।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: घड़ी मिला लीजिए, दिन के 12 बजे हैं। आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर करता है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त हो। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित हेनले 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि करियर के वास्ते और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद सिंगापुर आता है। कोदाओं सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान 20 साल से ज़्यादा की उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल से जुड़ी डे के फैसिलिटीज़ की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद हुए गैर सरकारी संगठनों, देखभाल करने वालों और अधिकारियों ने ज़्यादा समावेशी, मानवीय और आत्मनिर्भरता उन्मुख समाज के हक में प्रस्ताव दिए। मकसद है दिव्यांग लोगों को समाज में बेहतर जगह दिलाना और उन्हें नौकरी की ज़्यादा संभावनाएं उपलब्ध कराना। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले हफ्ते स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्टेटस प्रोग्राम का फाइनल लगा। ये पहल तृतीयक शिक्षा मंत्रालय की रही। मकसद रहा छात्रों में नवाचार और ठेकेदारी के प्रति दिलचस्पी प्रोत्साहित करना। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रथम संस्करण में भाग लिया। 3 बेहतरीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की। 780 से ज़्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया और 220 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवा काफ़ी हद तक बाधित हुई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज के लिए हमारा साथ यहीं तक था। अगली बात तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: इकरार हुआ। वैसे यहाँ पर कुछ बातें हम करने वाले हैं। वेलकम, स्वागत है आप सभी का इन योर रेट्रो रिदम विद मी मनीष मा।
1: रेट्रो रिदम,
0: फर्स्ट ऑफ जून को हम मनाते हैं द बर्थडे ऑफ नरगिस। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं और ये जो शो है स्पेशली इस पहले घंटे को हम डेडिकेट करना चाहते हैं तो नरगिस जो आज होती हमारे साथ तो अपना जन्मदिन मना रही होती और नहीं भी है, कोई बात नहीं। आई गेट हियर सो मेनी लवली ट्रैक्स जो आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए मनीष माओ विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शंस। वैसे आप तो जानते ही हैं कि नरगिस बॉर्न फातिमा रशीद वॉज अ पायनियर इंडियन एक्ट्रेस। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रिवर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन हिंदी सिनेमा। उनकी जो करियर है शुरुआत की है उन्होंने 1930s में टिल द 1960s, बेस्ट नोन फॉर नेचुरल एक्टिंग एंड ये जो स्टाइल है काफ़ी यूनिक है और उन जमाने की जो एक्ट्रेसेस है अभिनेत्री थे वो काफ़ी अलग थे, काफ़ी स्पेशल थे। तो आज उनके स्पेशल डे हम मनाना चाहते हैं यहाँ पर आपके साथ। आज है सनम मधुर जान में हम तुम मिले तो विदा नहीं भी के आज जाएगी बाहर। आगे से सम रियली नाइस वर्क ऐसे ऐसे बस गानों के साथ हम मौजूद रहेंगे आपके लिए। द प्रेजेंस विल बी ग्रेट। आप दोस्तों को भी बताइएगा आज इस पहले घंटे में नरगिस के नाम।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम,
1: जहां अभी इस वक्त की सब पहले घंटे में बजा रहे हैं बस नरगिस के प्यारे प्यारे गाने, बस उनके बारे में क्या बात करें, वो ना बस मदर इंडिया के जो मूवी से भी जानी जाती हैं, 1957 में रिलीज हुई थी मूवी नरगिस, अपने टॉप ऑफ द करियर इन महबूब खान के जो एपिक मदर इंडिया मूवी में वो दर्शाया गया है, क्या पोर्ट्रेल ऑफ राधा एज रेजिलिएंट सेल्फ सैक्रिफाइसिंग विलेज वुमन, जहाँ पर वो ना वुमनहुड की, इंडियन वुमनहुड की इमोर्टल सिंबल बन गई है। और ये जो परफॉर्मेंस थी इस मूवी में मदर इंडिया में, उनको जिताया है फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, और यही जो मूवी है उन्होंने उनको हेल्प किया है टू सिक्योर द इंडियाज फर्स्ट एवर एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। सो उनके बारे में बात हो रही है, नरगिस के बारे में बात हो रही है, उनको हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस, कोई भी अच्छा अच्छा सा गाना आप नरगिस के बारे में पसंद करते हैं और बात भी करना चाहते हैं, मैसेज के जरिए आप भेज सकते हैं 549-1294 पर नगरी नगरी फ्रॉम द फिल्म मदर इंडिया। हियर वी गो,
0: Retro Rhythm
2: RM2.

0: क्या गाने हैं यार वाला मूवी से लिया गया ये गाना। वैसे देखा जाए तो राज कपूर का जो एरा है 1940 में शुरुआत और 1950s में शी एक्चुअली फॉर्म द लेजेंडरी प्रोफेशनल एंड रोमांटिक पार्टनरशिप विद द एक्टर डायरेक्टर राज कपूर। हम नरगिस की बात कर रहे हैं। दोनों साथ में नजर आए मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट्स में, जैसे कि रोमांटिक क्लासिक बरसात मूवी जैसे 1949 में और आवारा 1951 में, श्री 420 1955 या That was the era जहाँ पर लोग जैसे खुश हो रहे थे ऐसे ऐसे गानों को सुनकर। उनकी जो परफॉर्मेंस है बस सर आँखों पर, उन्होंने बस क्या निभाया अपने किरदारों को। यहाँ पर ठीक है मूवी आवारा और आ गए हैं यहाँ पर श्री मूवी से लिया गया ये गाना दिल का हाल सुने दिल वाला। कौन भूल सकता है ऐसे गाने, आई डोंट फॉरगेट। और कभी कभी यादों को ताज़ा करने के लिए हम यहीं पर बैठे, यही तो है रेट्रो रिदम।
1: Retro Rhythm RM2

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस गाने नरगिस के नाम और राम के नाम भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशल नरगिस शो है।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती।
2: चलिए ये गाना आप एंजॉय कीजिएगा। जहां मैं जाती हूँ मन्ना दे और लता मंगेशकर की आवाज में, ठीक है, मूवी चोरी चोरी।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: चलिए जी, ये आखिरी गाना बस हम डेडिकेट करना चाहते हैं टू ऑल नरगिस के फैंस. अभी हो चला खत्म ये सिलसिला अब नरगिस. अर्ली 50s, 60s फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. अभी के लिए आई एम गोना गिव यू रेंडेवू फॉर द 90s बेस्ट सॉन्ग सिलेक्शंस इन द सेकंड आवर.

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ पूजा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष माँ, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की महत्वाकांक्षा अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेशों के माध्यम से साकार हो रही है। मेडी विशन लिमिटेड मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः 1 बिलियन से अधिक रुपए के निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी और नए कुशल रोजगार सृजित करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसका विषय यह रहा, अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटाइन एंड टोबैको एडिक्शन। इसका उद्देश्य रहा तंबाकू, निकोटाइन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना, विशेष रूप से युवकों के बीच। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर करता है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, ये जानकारी शिक्षा पर आधारित हेनले 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। विदेश में अमेरिका ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जबकि तेहरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास एक सप्ताह के भीतर तनाव बढ़ने की तीसरी ज्ञात घटना है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। एस एस ऑल इन लिस्कालिये में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड श्री रोदी नागाया, जिन्हें लोग कृष्णा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी माँ लक्ष्मी नागाया के मकान एस एस ऑल इन लिस्कालिये से उठाकर मारिजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
5: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: हो तूने मेरा दिल ले लिया। 1:10 हुए हैं, यहाँ पर आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। वेलकम, स्वागत है आप सभी का इन द सेकंड आवर ऑफ योर रेट्रो रिदम। जैसे कि आप जानती हैं, अब तो 90s का सिलसिला शुरू हो चुका है। वैसे लेट 80s और अर्ली 90s और लेट 90s के साथ हम यहाँ पर जुड़ गए हैं आपका साथ निभाने के लिए दिन के 2 तक। यहाँ पर मनीष माजी है, यहाँ पर ऑफकोर्स आपकी सिलेक्शन है और यहाँ पर आपके मैसेजेस भी है 5491294 पर। सो मेनी पीपल हैव एंजॉयड द नरगिस वाला सिलेक्शन। वैसे खत्म नहीं होता सिलसिला, एक बार फिर से अगले साल हम मना लेंगे उनका जन्मदिन हमारे और आपके साथ भी। ओके, अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक। ये काली काली आंखें बाजीगर मूवी से लिया गया ये गाना, आ रहे हैं आपके लिए।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sans tous audi, et na toujours en pause, en souffle, en moment.

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती
0: रेट्रो रिदम।
2: चलिए यहाँ साथ में आपके मैसेजेस डेडिकेशंस भी आ रहे हैं। यहाँ पर सुया ने मैसेज भेजा था और उन्होंने कहा कि मदर्स डे पर मेरी माँ का जन्मदिन था एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गोज़ आउट टू मामा शारदा बगन जो कि 82 ईयर्स के हुए हैं। क्या बात है सिया, बिहारी की तरफ से कंगोमा के यहाँ रहती हैं और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं अपनी मम्मा के लिए। और यहाँ पर हाय मनीषु, कैसे हो समारा, हाय लव एंड ब्लेसिंग्स गोज आउट टू यू एंड हैप्पी मदर्स डे गोज आउट टू ऑल दोज जो कि आज अपना मदर्स डे बना रहे हैं। वैसे मैं जानती हूँ कभी कभी भी मुश्किल हो जाती है, टाइम नहीं मिलता टू पार्टिसिपेट इन अ मदर्स डे। अगर आपको टाइम मिल जाए अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए तो वक्त ज़ाया ना करो। यहाँ पर वेलकम द सेकंड आवर, आई गेट सम रियली नाइस ट्रैक फ्रॉम हम कह सकते हैं कि लेट 90s और अर्ली 2000 और अर्ली 90s केरा से लिया गए, इससे लिए गए सारे गाने आपके नाम। बस दोज ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती और जो भी लंच के लिए जा रहे हैं आपको विश करना चाहते हैं बन्ना पिची। आप एंजॉय कीजिए अपने ड्राइव को, अपने खाने को हमारे साथ, यूँ ही बस टाइम निकल ही जाएगा।
0: Retro Rhythm.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: वैसे यहाँ पर आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अनबिलीवेबल व्हाट अ प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग सिलेक्शंस. वैसे यहाँ पर हम श्राई देना चाहते हैं टू ऑल दोस जो कि हमको मैसेज भेज रहे हैं. वैसे यहाँ पर हेलो जी, डेव फ्रॉम पेरिस, कोई भी गाना डेडिकेट कीजिएगा टू माय बिलीवेड वाइफ अमृता. हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. यहाँ पर गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती, नेक्स्ट सॉन्ग इज टू अब्दुल इनसाइड अ बानू.

0: Retro Rhythm.
1: किसी के प्यार में हरी हरन की आवाज में, वैसे टेकन फ्रॉम द मूवी दिल दिल प्यार वार, जिसमें नजर आए थे माधवन ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते ही हैं। नरगिस के साथ साथ आज हम मना रहे हैं द बर्थडे

0: ऑफ माधवन जिनका जन्म हुआ था ऑन द 1st of June 1970 को, आज वो पूरे 56 ईयर्स के हुए हैं एंड उनको हम जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं देना चाहते हैं. रघुनाथम माधवन को वैसे नोन फॉर एन इंडियन एक्टर, स्क्रीन प्ले, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर हु प्रेडोमिनेंटली वर्क्ड इन तमिल फिल्म, तमिल सिनेमा एंड ओवर द ईयर्स he expanded you know his talent towards the Hindi cinema also. Aur unko Padma Shri ka award mila tha by the government of India 2026 ko in the field of art, jahan screenwriters ke sath sath wo jane pehchane hain for the box office hits jaise ki Tanuvat Manu Vittai इन 2012. वैसे ये तमिल सिनेमा की बात हो रही है लेकिन अभी के लिए हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं. और यहाँ पर आप जो साथ निभा रहे हो द बेस्ट ऑफ मैसेजेस यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ी देर में. गुड आफ्टरनून जी. Manish Mavam, Lalita Jitan here, lunchtime listening to so, so rocking songs. Hello Didi, kaise ho? Please play beautiful song. For Yalesham of Suriname. To abhi ke liye, awaaz do humko, hum kho gaye. Taken from the movie, Dushman. Chala rahe hain aapke naam. Vaise, not to forget, we are having a very, very good time with everybody tuning to RM2 Radio Masti.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

चलिए इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है और आपको हम कहेंगे मुलाकात होगी एक बार फिर से 7 से 9 बजे के बीच ऑन वेडनेसडे। बाय।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की महत्वाकांक्षा अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेशों के माध्यम से साकार हो रही है। मेडिवेशंस लिमिटेड मोका अस्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः एक बिलियन रुपये से अधिक निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी और नए कुशल रोजगार सृजित करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन साथ ही वैपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य रहा तंबाकू निकोटाइन उत्पादों से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त है। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित हेनले 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के असर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। विदेश में अमरीका ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जबकि तेहरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास एक सप्ताह के भीतर तनाव बढ़ने की तीसरी घटना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं। उनके अनुसार ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराना भी शामिल है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। एसएसओ लिन इस कार्य में 50 साल के 50 इयर्स ओल्ड श्री रोदी नगया, जिन्हें लोग कृष्णा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनकी मां लक्ष्मी नगया के मकान एसएसओलिन निस्कालिए से उठाकर माही जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। नंबर 22 रवलेन उकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री करणदेव अलियाओ, जिन्हें लोग करणदेव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी लीला देवी अलियाओ के मकान नंबर 22 रवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल है जवानी तो इश्क होना है इसी गाने के साथ आप सभी का वार्म वेलकम. हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज मंडे यानी कि हफ्ते का पहला दिन एंड फर्स्ट ऑफ जून यानी कि महीने का पहला दिन भी. सो प्लीज गॉड प्लीज ये जो जून है सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. और इसी विशेष के साथ वार्म वेलकम आप सभी का वी टाउन के गर्मा गर्म खबरों के साथ. मैं आ गई हूँ आपका वार्म वेलकम करनी ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. तो वेल फ्रेंड्स, मैं हूँ परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा राइट हियर ऑन अ लवली रेडियो स्टेशन जहाँ पर आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक हम तो लेकर आते हैं. सो शुरुआत हुई है जवानी तो इश्क होना है. जानते ही हैं आप दैट ये फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है इसी महीने में यानी कि दिस फ्राइडे. फिल्म में नजर आने वाली है वरुण धवन और उनका साथ देती हुई दो ब्यूटीफुल लेडीज मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े. अब लग तो रहा है कि एरर ऑफ कॉमेडीज होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है मूवी में, लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आएगी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की क्या रिपोर्ट रहेगी, इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतजार. सो ऐसी कुछ गर्मा गर्म खबरें लेकर आए हैं आपके नाम, कहीं मत जाइए. स्टे वेल कनेक्टेड. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स.
0: आज आजादी है. बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स बात करते हैं साल 2000 यानी कि वो जो दशक था 2000 का जो एरा था इसमें बॉलीवुड में रोम कॉम फिल्मों को खूब पसंद किया जाता था। दर्शक उस समय नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते थे और एक्टर इमरान खान भी पर्दे पर खूब पसंद किए गए। इसी बीच अब एक दशक बाद इमरान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और वो जल्द ही ओटीटी की फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर भी दिखाई देंगी। और इसी बीच हाल ही में भूमि ने इमरान को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान भूमि ने हंसते हुए कहा कि बड़े होते समय मुझे इमरान खान पर बहुत बड़ा क्रश था, उनकी रोमांटिक फिल्मों में वो सबसे अच्छे और आदर्श लड़के की तरह नजर आते थे। आजकल वैसी रोमांटिक हीरो और वैसी रोम कॉम फिल्में जो है वो कम ही बनती है। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत ही पसंद आई और ये फिल्म मैच्योर इमोशन और खूबसूरत है, यानी कि इमोशनल और खूबसूरत है। और भूमि इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है, इसीलिए उनके साथ स्क्रीन शेयर करना किसी सपने से कम नहीं। और उनकी फिल्में देखकर वो काफ़ी बड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी उनके लिए स्पेशल होने वाला है, यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और कहती है कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करके जैसे उनका एक सपना पूरा हो गया हो। होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल होता है। कहा कई बार हम भी देखते हैं कि कुछ स्टार्स जो है वो हमारे क्रश बन जाते हैं, एंड जस्ट इमेजिन उस क्रश के साथ अब आप एक फिल्म कर रही हैं तो वो एक्सपीरियंस तो एकदम डिफरेंट होगा। सो दैट्स अधूरे हम अधूरे तुम, जो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है ओटीटी पर। और फिल्म से कम बैक कर रहे हैं इमरान खान आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिल्म में उनका साथ देती हुई नजर आएंगी भूमि पेडनेकर। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कम बैक कैसा रहता है, लोगों को ये फिल्म और इनकी जो कहानी है, इनकी जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी लगती है।
1: RM2 Radio Musty Feels Musty

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वैसे तो दोस्तों जून का महीना शुरू हो चुका है और इस जून के महीने में बॉलीवुड में काफी सारी फिल्में रिलीज होने को है। एकदम सेट शुरुआत हो रही है, है जवानी तो इश्क होना है। इसके बाद मच अवेटेड फिल्म वो है वेलकम टू दी जंगल। अब वेलकम टू दी जंगल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्टार कास्ट मतलब बॉलीवुड का एक नाम आप सोचिए और वो स्टार इस फिल्म में नजर आएगा। सो यानी कि अक्षय कुमार, उनका साथ देती हुई दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, जॉनी लीवर, लारा दत्ता, अर्शद वारसी, बॉबी दियोल, मनुषी छिल्लर, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, राहुल देव, राजपाल यादव, परेश रावल एंड मैनी मो। यानी कि दोस्तों जस्ट इमेजिन करिए कि ये कितने सारे स्टार्स हैं जो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। एंड सबसे जो इस फिल्म का कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है जो लोगों को इस फिल्म को देखने के लिए अट्रैक्ट करने वाला है, वो है दैट अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक साथ फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। अब फिल्म में उन दोनों की केमिस्ट्री क्या होने वाली है, रोल क्या होने वाला है, स्क्रीन स्पेस कितनी शेयर करने वाले हैं, इसके लिए तो हमें फिल्म को देखना होगा। लेकिन आपको बता दें दैट ये फिल्म का एक अपकमिंग सॉन्ग यानी कि रिलीज तो हो गया है, गाना अपकमिंग फिल्म का ये गाना रिलीज हो गया है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग घिस घिस, जिसमें नजर आए हैं अक्षय कुमार एंड भोजपुरी एक्टर सिंगर अक्षरा सिंह। ये गाना जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग रिएक्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार के डांसिंग मूव्स को लेकर, उनकी एनर्जेटिक स्टाइल को लेकर और उनका जो लुक है काफी डिफरेंट इन दिस सॉन्ग। भोजपुरी एंड बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस नजर आते हैं इस गाने में। और चलिए अभी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस गाने की बात की है, वेलकम टू द जंगल फिल्म की बात की है, तो उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम।

तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अक्षय खन्ना, जिनके लिए साल 2025 बेहद शानदार साबित हुआ। पिछले साल इस एक्टर ने दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, दोनों में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया और हर किसी का दिल जीत लिया। पहले छावा से बॉक्स ऑफिस पर धावा बोला और फिर धुरंधर ने धूम मचा दी। इन फिल्मों में उनकी शानदार एक्टिंग से हर कोई उनका फैन बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धुरंधर के रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना खुद आखिर किस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा थे? ये तो हम जानते हैं दैट वो सिंगल है और उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनके चेहरे से उनकी नज़र नहीं हटती थी। अक्षय खन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस पर फिदा थे जो मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी है। और यहाँ बात हो रही है दिग्गज अदाकारा ऐश्वर्या राय के बारे में। और जी हाँ, ऐश्वर्या ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ साथ अपनी लाजवाब खूबसूरती से फैंस के साथ साथ कई बॉलीवुड एक्टर्स को अपना दीवाना बनाया। उन्हीं में नाम शामिल था रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना का भी। अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी नजर आ चुकी है। दोनों ने ताल और आ अब लौट चले जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उस वक्त अक्षय अपनी को एक्ट्रेस की खूबसूरती के आगे सरेंडर कर देते थे और अक्षय ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में ऐश्वर्या राय को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए बताया था कि जब वो ऐश्वर्या से मिलते थे तो उनकी खूबसूरती से नजरें हटाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। अक्षय ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि जब भी ऐश्वर्या उनके सामने आती थी तो वो बस उन्हें घूरने लगते थे, यानी कि बिल्कुल उन्हें स्टेयर करने लगते थे, बिकॉज शी वॉज सो प्रिटी। स्पेशली उनकी जो आंखें थी उनसे नजरें हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल ही था। सो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को उन्होंने शेयर किया था, लेकिन अभी के लिए तो हम जानते हैं दैट ही इज ऑल सिंगल। लेकिन क्या पता अगर उस टाइम शूटिंग के दौरान अगर दोनों के बीच कुछ होता तो बात कुछ अलग होती।

लेकिन बी टाउन है, बॉलीवुड है, खबरें बनती है, स्टोरीज बनती है, लव स्टोरीज भी बनती है, दिल जुड़ते हैं, दिल टूटते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बस अट्रैक्शन की, यानी कि एक एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती ने घायल कर दिया खुद रहमान डकैत को। चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप सदाचार बॉम्बे टॉकीज, वी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ, ये है आपका RF2 रेडियो मस्ती।

So well, that was Roya Na. Haunted 3D Echoes of the Past release होने वाली है on 12th of June. Directed by Vikram Bhatt, produced किया है Anand Pandit ने. Film में नजर आने वाली हैं after a long time yes Mimo Chakraborty यानी कि मिथुन के बेटे and जिनका नाम था महाअक्षय चक्रवर्ती, नाम चेंज किया उन्होंने मिमो, और उनके साथ नजर आएंगी चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश एंड गौरव वाजपेयी एज वेल. रिलीजिंग डेट 12th ऑफ जून. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. उसके बाद म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार है। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित है ने 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के असर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है और उसके बाद सिंगापुर आता है। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की

0: महत्वाकांक्षा, अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेश उन निवेशों के माध्यम से साकार हो रही है। मेडिवेशन लिमिटेड मुका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः 1 बिलियन से अधिक रुपए के निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन, विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य रहा तंबाकू से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना। विदेश में म्यांमार के एक गांव में पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका में मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 22, होवलेन उकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 years old श्री करण देव आलिया, जिन्हें लोग करण देव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, इनकी अर्थी कल मंगलवार को दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 होवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies
5: Radio Musti
6: Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, ladies and gentlemen, warm welcome. First of June, Monday, यानी कि हफ्ते का पहला दिन, महीने का पहला दिन, positive start, खुशियों भरी एक दोपहर जहां पर लेकर आए हैं हम आपके लिए B Town की updates. And that was a beautiful song, धुरंधर फिल्म का ये गाना, music शाश्वत सचदेव, आवाज खान साहब और ये गाना हमारे सभी listeners के नाम with this धमाकेदार song welcome करते हैं आपका on the waves of Radio Musty. साथ दे रही हैं आपसे बता दिए दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, मैं हूं परी आपके साथ. बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें कर रही हैं आपका इंतजार विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना है गोज आउट ऑफ ऑल द फैंस ऑफ जुबिन नौटियाल. आहाहा, व्हाट अ कॉन्सर्ट इन मॉरिशस. और उसके बाद उनकी आवाज तो बस यहाँ पर गूंजती रहेगी बिकॉज उनके प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम चलाते रहेंगे टाइम टू टाइम. और साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों, कनेक्टेड है आप हमारे साथ. सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन रहेगा इंतजार 5499-1294 पर.
0: You're listening to a Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 3:24 हो गए हैं. देखिए टाइम कितना फटाफट जाता है. अभी तो हमने आपका वेलकम किया था और इट्स ऑलरेडी 3:24. बता दिया आपको, बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बंदर को लेकर सुर्खियों में है, जो 5 जून यानी कि 5th ऑफ जून को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. और इसके लिए ये फिल्म के जो कलाकार है वो हर जगह जाकर फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. बॉबी देओल जल्द ही आलिया भट्ट की अल्फा में भी नजर आएंगे. और इस फिल्म को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें रही थी कि अल्फा के सेट पर आलिया और बॉबी के बीच कुछ अनबन हो गई है. और इन खबरों पर अब बॉबी देओल ने रिएक्ट किया है और सच्चाई बताई है. बॉबी देओल ने इन अफवाहों को एक कसरे से खारिज कर दिया है और बताया है कि इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. एक्टर का कहना है कि उनके और आलिया भट्ट के बीच सब कुछ ठीक ठाक है. बॉबी देओल ने इन अफवाहों पर खुलकर बात की, जिनमें दावा किया गया था कि आने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा के सेट पर आलिया और उनके बीच बहस हुई थी. एक्टर ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि जब उन्होंने पहली बार इन रिपोर्ट्स को देखा तो उन्हें काफी हैरानी हुई. और अब बॉबी ने साफ कर दिया है कि इन अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है. और उन्होंने आलिया के प्रोफेशनलिज्म और लगन की तारीफ भी की और कहा कि शी इज सच अ स्वीट एक्ट्रेस. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना कोई अनबन हुई है, ना कोई मन मुटाव है, सब कुछ ठीक ठाक है और शूटिंग एकदम परफेक्टली चल रही है.
1: RM2
3: Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.
2: Oh, yeah.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों जानते हैं आप दो से लेकर चार बजे तक लेकर आते हैं हम बी राउंड की अपडेट्स आपके लिए। सो बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल इंडस्ट्री के सबसे क्यूट और सिजलिंग कपल्स में से एक है। दोनों को एक साथ देखना फैंस को काफी पसंद है। हाल ही में विकी का बर्थडे था और अब एक्ट्रेस ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है। आपको बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। कैट ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रोल्स अदा किए हैं और वो सबके दिलों की जान है। कैटरीना ना सिर्फ एक एक्ट्रेस है बल्कि वो एक बेहतरीन बिजनेस वुमन भी है। हाल ही में कैट ने अपने पति और एक्टर विकी कौशल के बर्थडे से जुड़ी कुछ खास अनदेखी तस्वीरें शेयर की। कैट और विकी हाल ही में विहान के मम्मी पापा भी बने हैं और पापा बनने के बाद ये विकी का पहला बर्थडे था। ऐसे में कैटरीना ने पति और बेबी की खास तस्वीरें शेयर की। कैटरीना कैफ काफी वक्त से अपनी तस्वीरें शेयर नहीं कर रही हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वैसे हम उन्हें एक आध झलक में देखते हैं लेकिन इस बार उन्होंने फुल फ्लेज्ड तस्वीरें शेयर की है और इन तस्वीरों में वो एक ब्लैक ट्रेंच कोट में नजर आ रही है जहां उनके खूबसूरत बालों को देखा जा सकता है। और कैट अपनी सेहत का एक्स्ट्रा ध्यान रखती है, वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है और उनकी सेहत का असर उनके बालों पर साफ नजर आ रहा है। बेटे विहान ने पापा विकी को किस तरह से प्यार से विश किया ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक प्यारा सा केक और विहान के खिलौनों को देखा जा सकता है। और कैट ने इस पोस्ट पर उनके इस पोस्ट पर अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर जैसे सेलेब्स ने कमेंट भी किया है। कुछ वक्त तक छिपकर डेट करने के बाद विकी कौशल कैटरीना कैफ ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की। पिछले साल वो माता पिता बने और कैटरीना ने 7 नवंबर 2025 को एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम उन्होंने विहान रखा। तो आपको बता दें दैट यहाँ पर उन्होंने विहान का चेहरा भी दिखाया था लेकिन ऑफ कोर्स इसे थोड़ा सा उन्होंने ब्लर कर दिया था। और कैट जो है वो अपनी पैप्स को कभी भी निराश नहीं करती है और तभी पैपराज़ी जो है वो उन्हें कैप्चर करना भी बहुत पसंद करते हैं। दोनों को साथ में देखना फैंस को काफ़ी पसंद है। कैटरीना और विकी को बॉलीवुड के सबसे हैपनिंग कपल्स में से एक माना जाता है और दोनों खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। विकी जल्द ही आलिया और रणवीर के साथ संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं, यानी कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इन हस्बैंड वाइफ के साथ नजर आने वाले हैं। विकी कौशल क्या होगा धमाका ये तो बाद में पता लगेगा लेकिन अभी के लिए आई कैन से दैट ही इज एंजॉयिंग हिज बेस्ट लाइफ अपनी ब्यूटीफुल वाइफ और प्यारे से बेटे के साथ।
4: रेडियो मस्ती
0: हिट म्यूजिक ओनली
4: रेडियो मस्ती।
3: यहाँ तो बस लग रहा है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल का जो प्यार है दिन ब दिन और भी गहरा होते जा रहा है। दिस वन गोज आउट फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: सो वेल फ्रेंड्स, आफ्टर गहरा हुआ, आपका जो प्यार गहरा हुआ है हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ, बस उस प्यार को आप ऐसे ही गहरा बनाते रहिए, क्योंकि आपका साथ है, आपका प्यार है, तभी तो हम है. थैंक यू फॉर ऑल द लव. चलिए दोस्तों, आपके कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस लेकर आए हैं 5499-1294 पर. कहते हैं सैयारा और आखिरी इश्क इन गानों को चलाने के लिए शुक्रिया, और फिर से ओहो फिर से नैना भरे, ये गाना तो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. कोशिश करेंगे इसे चलाएंगे हम 4 बजे के बाद आपके लिए. हमारी प्यारी रोशनी जी साथ दे रही है. गुड डे टू यू टू डियर, एंजॉय योर डे. रेडियो मस्ती के साथ गाना होगा आपके नाम. एंड कहते हैं प्लीज ऐड माय नेम, मैं हूं भगवत विदेशी और डेडिकेट कर रहा हूं गाना फॉर अनुषा. बिल्कुल जी बिल्कुल, आप दोनों के नाम एक ब्यूटीफुल गाना इज वेटिंग, जरूर चलाएंगे आपके नाम. एंड कहते हैं हेलो लवली बहना परी, मैं हूं कुमार देवचन, घर आ गया हूं और काम खत्म, लेकिन लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड एंजॉयिंग द प्यारे प्यारे गाने. अगला गाना डेडिकेट करना चाहता हूं लवली पापा श्याम देवचन के नाम ऑफ पेबे, लव यू पापा एवरी डे एंड गॉड ब्लेस यू, दैट्स रियली स्वीट. और चलिए यहां पर आ गई है विजया जी, कहती है मैं तो आराम फरमा रही थी और एकदम से जब गानों को सुना तो मूड एकदम सेट हो गया. तो विजया जी वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं, एंड आई डू होप दैट यू एंजॉयड योर वीकेंड. वीकेंड के बाद अब एक नया हफ्ता कर रहा है आपका, बाहें खोल कर इंतजार. सो जो अगला गाना है होगा आपके नाम, आई विशिंग यू अ वंडरफुल मंडे एंड अ वंडरफुल वीक अहेड. कहती है कि धुरंधर गाना सुनते ही मेरी आंखें जो है वो एकदम खुल गई. ऐसा ही असर मेरे साथ भी होता है. थैंक यू जी विजया जी, लगता है आपके और मेरे ख्याल बहुत मिलते हैं. थैंक यू साथ देने के लिए शुक्रिया. अगला गाना होगा आपके नाम, एंड इक्वली गोज आउट फॉर अब्दुल एंड सायरा बानो. रेडियो मस्ती टीम के नाम भी डेडिकेट कर रहे हैं गाना. थैंक यू जी. और कहते हैं मैं तो हूँ ललिता जीतन, एंजॉय कर रही हूँ आपका प्रोग्राम गर्मा गर्म इलायची चाय के साथ. सो प्लीज एक ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे नाम भी. बिल्कुल जी. और वी ऑल्सो हैव प्रीतम बिटू साथ दे रहे हैं पीतो से, और बिग हेलो टू ऑल द लिसनर्स. अभी के लिए तो आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर एवरी डे साथ निभाने के लिए शुक्रिया, और एवरी डे स्वीट मैसेजेस हम तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया. थैंक यू प्रीतम जी. गाना होगा आपके नाम, आपके पूरे परिवार के लिए, एंड इक्वली गोज आउट जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती. मैं हूँ परी आपके साथ, एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज.
0: रेडियो मस्ती,
1: हिट म्यूजिक ओनली.
0: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check for PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी को मेरा नमस्कार. कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बेरीव में 375 मिलियन रुपये की लागत से एक नए भंडारण परियोजना को शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बहुत जल्द एक कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर

0: शुरू करेगा, जारी करेगा इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत बेरी स्थित नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे आधुनिक कोल्ड स्टोरेज गोदाम तथा एक कृषि खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जाएगा। कुल 8,000 टन भंडारण क्षमता वाले ये गोदाम देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति संबंधी संकटों के दौरान भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना कृषि उत्पादों के बेहतर संरक्षण, खाद्य में कमी तथा स्थानीय कृषि क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगी। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की योजना मेडिवेशन लिमिटेड मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है। युवकों में तंबाकू का सेवन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। उद्देश्य रहा तंबाकू उत्पादों से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना, विशेषकर युवकों के बीच। विदेश में अमेरिका ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। तेहरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में एक अमेरिकी सैन्य अध्यक्ष को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं और उनके अनुसार ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराना भी शामिल रहा। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: एंड वेल आफ्टर हेक्टिक वर्किंग आवर्स अब तो वक्त खत्म हो चला है और टाइम हो गया है कि आप घर की ओर बढ़ सके, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक कहाँ आपको आराम से घर पहुँचने देता है। तभी तो हम लेकर आए हैं गुड म्यूजिक, जिसे सुनते सुनते आपका ये जो सफर है एकदम स्पेशल और खास फील होने वाला है। चलिए दोस्तों, इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स। मैं हूँ परी आपके साथ, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम एंड होने वाले हैं कुछ स्पेशल सेगमेंट्स। कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: Yeah.

0: communiqué depuis le ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, le ministère peut informer le public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou sa centre quarantaine qui se bien enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.govamu.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: Hit music only.
2: Feels a musty. Radio Musty.
4: So well friends, कुछ beautiful tracks लेकर आए हैं आपके लिए because it's your अवतार vibes. We know that traffic का ये time, hectic दिन के बाद इस सफर को तय करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब good music हो साथ में तो सफर और भी सुहाना लगता है. परी का साथ, it's time for your अवतार vibes. साथ दे रहे हैं आप भी messages, dedications 54991294 पर गजेंद्र वर्मा की आवाज, a beautiful song for all the listeners of Radio Musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: एंड वेल फ्रेंड्स, आफ्टरनून टाइम, जहाँ पर यही तो वक्त मिलता है, भले ही ट्रैफिक क्यों ना हो, लेकिन बस यही टाइम है जिसमें आप थोड़ा सा मी टाइम भी एंजॉय कर पाएंगे। ट्रैफिक को भूल जाइए, बस आसपास देखिए खूबसूरत नज़ारे और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती। याद तो आपको यही रखना है कि ट्रैफिक जो है वो टेम्पररी है, लेकिन आपका मूड पूरी शाम को अफेक्ट कर सकता है। सो कीप योर मूड हैप्पी एंड गुड म्यूजिक लेकर आए हैं, यानी कि ये जो चिल वाइब्स हैं इन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती। दैट्स योर अफ्तार वाइब्स, एंजॉय दिस वन।

0: गुड आफ्टरनून आपको परी, गुड आफ्टरनून ऑल एम टू लिसनर्स. सो वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस. आज बुल्गेरिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेकिया, माल्टा, नॉर्वे, स्वीडन, ये काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा. टर्की, नॉर्थ मैसिडोनिया और ऑस्ट्रिया, ट्यूनिसिया. काफी फ्रेंडलीज दूसरे रीजन में भी खेले जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान. UEFA अंडर 17 चैंपियनशिप में इटली की टीम ने आज डेनमार्क को 3-1 से हरा. वैसे अभी हाफ टाइम है, हाफ टाइम में 3-1 से इटली के जवान आगे हैं. फ्रांस के लिए 2-0 की जीत हाफ टाइम में ये चल रहा है. इस और अन्य मैच भी खेले जाएंगे. कल भी काफ़ी फ्रेंडली मैचेस हैं, इनमें कोलंबिया, कोस्टारिका, होस्ट टीम कनाडा उज्बेकिस्तान के खिलाफ, बेल्जियम, ये भी होगा क्रोएशिया के मैदान में, मोरक्को मादागास्कर, इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, वेल्स गाना और जॉर्जिया रोमेनिया. तो फ्रेंडलीज मैच खेले जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक सभी टीमें अपने कैंप में आ रही हैं. अर्जेंटीना की टीम मायामी में आ चुकी है, जहाँ पर वहाँ से ये लोग तैयारी करेंगे. तो वर्ल्ड कप पर अभी थोड़ी देर बाद और जानकारियां आपको देंगे. इधर इंग्लैंड का फॉर्मर कप्तान और मैनेजर केविन कीगन, उसने आज रिवील किया कि वो स्टेज फोर कैंसर डायग्नोसिस, ये बात उन्होंने कही है. और आने स्लोट चला गया और उसने कहा कि आई लीव लिवरपूल एग्जैक्टली वेयर इट बिलोंग्स, यानी जब आया था तो लिवरपूल चैंपियन बना और बनी बनाई टीम उसको दी गई थी, जा रहा है. लिवरपूल ने एक ट्रॉफी भी नहीं जीता और केवल चैंपियंस लीग. सो लिवरपूल डजंट बिलोंग टू दैट प्लेस कह सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि लिवरपूल बिलोंग्स टू यूरोप्स एलीट, फिफ्थ प्लेस लेना ज़रूरी था. अगर इंग्लैंड की टीमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती यूरोप में, तो ये फिफ्थ प्लेस भी शायद यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए काफ़ी नहीं होता. तो अब लिवरपूल ओपन फॉर्मल टॉक्स विद फॉर्मर बोर्नमुथ मैनेजर अंदोनी इराओला इस वीक के दौरान, और ये उनका हेड कोच बन सकता है. आज एक इमोशनल लेटर में स्लॉट ने कहा कि उसको बहुत कुछ मिला, दैट इज समथिंग आई चेरिश. सो अलविदा आने स्लॉट. सूर्यवंशी, मैं इंडिया जा रहा हूँ अभी.
1: सच में?
0: पता है क्यों?
1: उनसे मिलने
0: उन्होंने बुलाया है, पता है क्यों?
1: क्यों? कि मॉरिशस में एक ही ऐसा फैन है जो इतना उनको मतलब पसंद करता है कि पूरा जो टीम था वही चेंज कर दिया.
0: पूरा. कैन यू इमेजिन 5 अवार्ड्स?
1: यस,
0: 5 अवार्ड्स. पहली बार हुआ है ये कि एक खिलाड़ी 2 अवार्ड जीतता है, और वो भी 15 ईयर ओल्ड. और बेस्ट बोलर को छोड़कर जो भी अवार्ड थे
1: सारे उनके नाम,
0: सब उसके नाम. और सूर्यवंशी का जो इंडिविजुअल प्राइज मनी जो रहा, 30,000 pounds sterling.
1: Wow.
0: Can you imagine कितने modest family से वो गया. और उसे एक टाटा सियेरा, the popular mid-size SUV India में, वो भी दिया गया. और इसीलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि he cannot drive.
1: आप उनको help करोगे, drive करोगे.
0: उस minimum driving age वहाँ 18 है.
1: Yes.
0: So वो drive नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ये दिया. So उसको emerging player award, orange cup दिया गया for the highest scorer, most valuable player for the campaign. भले ही राजस्थान रॉयल्स final में नहीं जा पाई, और उसने सबसे ज्यादा रन भी स्कोर किए, 776 runs 16 innings at the strike rate of 237.30. अब सभी लोग उसको उसके पीछे हैं. और वैसे वैभव सूर्यवंशी हजामत करके आया था कल,
1: देखा था, और बैठे भी थे
0: अमित शाह, ऑल दोज यू नो बिग नेम्स. सो अभी से ही नाम कमा रहा है और आई होप ही कीप्स हिज हेड जैसे हैं.
1: नो घमंड, हम्बल.
0: ये सचिन तेंदुलकर ने उसको कहा, इसको इतना मीडिया हाइप नहीं लेना चाहिए. रिकॉर्ड फुटबॉल की बात और करें, यहाँ पर एक और रिकॉर्ड वाला है. मिलनर 24 साल का कार्य और वो रिटायर हो रहा है, फॉर्मर इंग्लैंड इंटरनेशनल जेम्स मिलनर. उसने बताया कि अब वो प्रीमियर लीग से वनवास लेगा, संन्यास लेगा. 24 ईयर कार्य, 40 साल का, और ब्राइटन में खेल रहा था. उसने काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़े प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस के लिए. शुरू किया था लीड्स में, फिर मैनचेस्टर सिटी में गया, फिर लिवरपूल, फिर ब्राइटन, एस्टन विला, इस तरह से काफ़ी टीमों के लिए उसने एक खेला. और इधर टेनिस, ये भी जानना ज़रूरी है कि टेनिस में क्या हो रहा है. अमेजिंग अभी जो परफॉर्मेंस आ रहे हैं कुछ खिलाड़ियों की ओर से, जैसे

0: कोबोली। कोबोली ने आज एक बहुत ही टाइट मैच में वार्षदा को हराया। आज का जो अन्य मैच होगा वर्लिंस का पारी होगा अलियासी में ताबिलो सबलेंका उसाका, ये राउंड ऑफ 16 वाला मैच है। आज कालिंस्काया ने पुतापोवा को हराया। कीज अभी जीत रही है श्नाइडर के खिलाफ। बेरेचेनी खेलेगा सुरुंडलो के खिलाफ, वहीं पर चाफोए खेलेगा और नाल्दी। और आज राउंड ऑफ 16 में भी डबल मेंस डबल चल रहे हैं। क्रिकेट में आईपीएल खत्म,
1: बिल्कुल खत्म। और कहूंगी इतना ही, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन बैक टू बैक जीत गया आरसीबी।
0: आरसीबी और बिग टीम, लेकिन इस मैं काफी कुछ देखने को मिला। खासतौर पर अभी जो टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे आने वाले दिनों में, कुछ नए नए नाम आएंगे जरूर, दोज हु हैव एक्सेल्ड इन द आईपीएल। द बिग क्वेश्चन इज कि 15 ईयर ओल्ड
1: वैभव सूर्यवंशी
0: इंडिया सीनियर में रखा जाएगा या नहीं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन नीता अंबानी उस पर फिदा है,
1: बिल्कुल, तो कुछ तो हो सकता है।
0: नीता अंबानी वांट्स टू स्पेंड करोड़ टू ब्रिंग हिम इन
1: मुंबई की टीम में।
0: देखते हैं क्या होगा। डोंट फॉरगेट, थोड़ी देर बाद विल कम अप विद द वर्ल्ड कप स्पेशल।
1: थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अपडेट्स।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Welcome to Radio Musti.
4: Check this out.
3: The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti feels a musti.
6: Get ready for the biggest World Cup ever.
7: 2026 FIFA World Cup.
6: पहली बार होगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
7: चलिए
6: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
7: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
0: चलो वर्ल्ड कप की ओर। आज से जून महीना शुरू, जून 2026 मतलब वर्ल्ड कप का महीना। 11 जून से 19 जुलाई तक का, आज से 10 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू। वर्ल्ड कप स्पेशल में आज मैच ऑफिशियल्स पर फोकस करेंगे और एक दो लेटेस्ट न्यूज। सो वर्ल्ड कप फाइनल्स के मैच ऑफिशियल्स बहुत मेहनत करके, बहुत एक्सपीरियंस लेकर यहां आते हैं, चुने जाते हैं। इस बार 170 मैच ऑफिशियल्स चुने गए हैं। इनमें 52 रेफरीज, 88 असिस्टेंट रेफरीज और 30 वार ऑफिशियल्स, ये लोग 104 मैचों में काम करेंगे। यूरोप से 15 रेफरीज, साउथ अमेरिका से 11, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका से 12, एशिया से 7, अफ्रीका से 7 और ओशियाना से 2 रेफरी। 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का रेफरी पोलैंड से जिमोन मासिन्याच लिस्ट में है। एक महिला रेफरी भी है, यूएसए की टोरी पेंसो, इंग्लैंड से माइकल ओलिवर और एंटोनी टेलर। मॉरिशस से इस बार कोई नहीं है, अभी तक केवल 2 मॉरिशियंस वर्ल्ड कप में रेफरी रहे। पहला सिडनी पिको 1986 वर्ल्ड कप में एक मैच ऑफिशिएट कर पाया था। फिर आले लिमकीचोंग 2 वर्ल्ड कप में भाग ले पाया था, 1994 यूएसए में ब्राजील वर्सेस रशिया वाला मैच, फिर 1998 में फ्रांस में रोमेनिया कोलंबिया वाले मैच का सुपरविजन उसे दिया गया था। उसके बाद आले लिमकीचोंग फीफा रेफरी असेसर रहा 2018 वर्ल्ड कप में। फाइनल्स में नहीं है पर अफ्रीकी क्वालिफिकेशन राउंड में पैट्रिस मिलाजा, अहमद इरालाल, मारिया रिवर मैच रेफरी रहे। और टाइम आउट, कुछ और खबरें इस वर्ल्ड कप को लेकर। रेफरिंग की बात हुई तो कल की जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड मीटिंग लगी उसमें कई नियमों, कई रूल चेंजेस अनाउंस किए गए। थ्रो इन्स यानी आउट और गोल किक के लिए 5 सेकंड काउंटडाउन। खिलाड़ियों के बीच कन्फ्रंटेशंस या हाथापाई के दौरान अगर कोई खिलाड़ी अपने मुंह को हाथ या टी शर्ट से ढक के उस कवरिंग देयर माउथ, सीधे रेड कार्ड। प्रोटेस्ट पर अगर टीम वॉक ऑफ करे तो पनिशमेंट। मैंडेटोरी 1 मिनट पीरियड का मैदान के बाहर का इलाज। सेकंड येलो का दिए जाने पर वा इंटरवीन कर सकेगा। फ्री किक या कॉर्नर लेने से पहले अगर कोई खिलाड़ी को ब्लॉक किया जाए तो रेफरी सैंक्शन कर सके।

0: सकेगा। और टाइम आउट के दौरान खासकर जब कोई गोलकीपर घायल हो तब किसी भी खिलाड़ी को टेक्निकल एरिया में जाके कोच से बात करने की अनुमति नहीं है। मतलब इस बार रेफरी बहुत सख्त होंगे। पियर्लुइगी कोलिना रेफरी तो नहीं है लेकिन उसका स्टाइल जो है वो इन दिनों रेफरी एसोसिएशन के इंचार्ज हैं, वहां रोल निभा रहे हैं इंचार्ज का। सो वर्ल्ड कप स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, देते रहेंगे और खबरें द लेटेस्ट न्यूज वर्ल्ड कप के बारे में। आज रेफरीज के बारे में बात की, अ बिग सल्यूट टू ऑल दोज मैच ऑफिशियल्स जिनका काम आसान नहीं होता। शापो आवू मिस्यू।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

चलिए दोस्तों, इट्स टाइम फॉर योर अवतार वाइब्स, जहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. मैं हूँ परी आपके साथ टिल 7 PM. गुड म्यूजिक का डोज आपके लिए हम लेकर आते हैं. और दिन भर की थकान के बाद आफ्टर अ टायरिंग डे, इट्स टाइम कि आप गानों को एंजॉय करते हुए अपने घर जा सके जहाँ पर ट्रैफिक भी

0: इतना जो स्ट्रेसफुल रूट है वो आपको ना लगे. चलिए दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, आप साथ दे रहे हैं एंड ऑल्सो सेंडिंग अस मैसेजेस डेडिकेशंस ऑन 5499 1294. कहते हैं गाना हो जाए फॉर सिस्टर इन लॉ आरती मोरी, उन्हें विश करना है अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ हैप्पी मदर्स डे टू, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मौसी माला, उनके बेटे, सभी की ओर से प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. प्रकाशवती जी साथ दे रही हैं, आप गानों को एंजॉय कर रही हैं, थैंक यू जी, गाना आपके नाम, और ऐसे ही प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन करते रहेंगे हम ऑन रेडियो मस्ती. गाना गोज आउट फॉर बेटी अवनी एंड बेटा रोशन, कमिंग फ्रॉम मनीषा, उनके लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज. तो चलिए दोस्तों, साथ रहेगा आपका और मेरा शाम के 7 बजे तक ऑन रेडियो मस्ती. साथ दे रहे हैं आप, मैसेजेस डेडिकेशंस तो चलते रहेंगे ऑन 5499 1294. थोड़ी ही देर में बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज, उसके बाद मुलाकात होगी और कुछ और प्यारे गानों के साथ आपके इस दिन को हम बनाने वाले हैं म्यूजिकल मैजिकल. सो कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड.
1: RM2 Radio Musty.

0: latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.
2: And well, Sri Devi ke charm ke baad, it's time for Magic of Shahrukh Khan. We have this beautiful song, Ravi Shegil ki awaaz. जब तक है जान फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब तो मुसाफिर ही हैं, खुशियों की तलाश में हम तो सफर करते रहते हैं और अभी के लिए बस यही कोशिश है कि आपके मूड को हम सेट रखे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मैं हूँ परी आपके साथ, इट्स टाइम फॉर योर अवतार वाइब्स राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती। एंजॉय दिस वन।

0: Radio मस्ती।
1: और चलिए दोस्तों 5:22 मंडे आफ्टरनून 1st of June टू गेट यू इन योर मंडे मूड वी हैव दिस वन सुनिधि चौहान आदर्श शिंदे की आवाजें फ्रॉम द फिल्म जोकर। बीट्स एकदम बैंग ऑन और ये गाना गुजार उन सब आम लोगों के नाम उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। नॉट टू वरी वी हैव योर बैक हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। गुड म्यूजिक 24/7 आपके लिए राइट ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

एंड एग्जैक्टली जस्ट फॉर यू लेकर आए हैं ये गाने, ताकि इनको सुनते सुनते आपका ये जो सफर है कट ही जाए, यूं ही कट जाएगा सफर, साथ चलने से मंजिल आएगी नजर, यूं ही साथ चलने से। और जी हाँ दोस्तों, बातें तो हम करते रहते हैं और ये हम जानते हैं कि आफ्टर काम यानी कि दिन भर काम के बाद जब ये ट्रैफिक का टाइम आता है, लगता है कि कब ये ट्रैफिक ख़त्म हो, कब हम घर जाएं, कब हम रिलैक्स करें। लेकिन क्या पता ट्रैफिक के इस टाइम को भी आप रिलैक्सिंग बना सकते हैं, यानी कि म्यूज़िक से बढ़कर कोई थेरेपी हो नहीं सकती। और जब म्यूज़िक साथ हो तो फिर वक्त तो कट ही जाता है। म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो हर इमोशन को समझता है। एंड समवन वेरी वाइजली सेड कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं म्यूजिक बात करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो हम आपके टाइम को म्यूजिक के हवाले कर रहे हैं, यानी कि दैट्स योर अवतार वाइब्स। मैं हूँ परी, आपके साथ गुड म्यूजिक लेकर आए हैं। अगला गाना आपके दिल को सुकून पहुंचाने, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर ऑल द लिसनर्स जो दे रहे हैं हमारा साथ ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूँ परी, आपके साथ साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 7 PM ऑन रफ्तार वाइब्स।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a mistake.

0: So, चलिए दोस्तों आज कुछ लेकर आए हैं हम स्टाइलिश कॉम्बिनेशंस आपके लिए. व्हाइट शर्ट प्लस ब्लू डेनिम, अ टाइमलेस कॉम्बो जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता. दूसरा कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड बेज, सिंपल एलिगेंट परफेक्ट है फॉर बोथ कैजुअल एंड सेमी फॉर्मल लुक्स. नेवी ब्लू और व्हाइट की अगर बात करें सो फ्रेश क्लासी एंड एफर्टलेस स्टाइलिश आपको दिखाता है. ऑलिव ग्रीन एंड ब्लैक ट्रेंडी कॉम्बिनेशन जो काम करता है डे टाइम एंड इवनिंग वेयर में भी. Pink or white, yes, soft, fresh and perfect for a chic and relaxed look. Grey plus burgundy, sophisticated और ideal है, touch add करता है of elegance और आपके किसी classy event को ये एकदम perfectly suit करता है. Mustard yellow and blue denim, vibrant yet balanced, great for casual outing. So, जी हाँ दोस्तों आज ये कुछ क्लासिक कॉम्बिनेशंस हम आपके लिए लेकर आए हैं. अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा कलर पेयर करें तो ट्राई द क्लासिक व्हाइट एंड ब्लू डेनिम या फिर एलिगेंट ब्लैक और बेज. याद रखिए कि राइट कलर कॉम्बिनेशन कैन मेक यू एकदम स्टाइलिश और एकदम सिंपल आउटफिट को भी ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाता है. सो जैसे हम कहते हैं स्टे फैशनेबल, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे मैजिकल RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits, music only.
3: Feels a musti.
0: So well friends, after this fashion tip, back to music. Mustafa Zahid ki awaaz and that's a very popular one from the film Blood Money goes out aap sabhi ke naam. Jo de rahe hain saath on RM2 Radio Masti. So that's your Raftaar Vibes. Main hoon Peri aapke saath shaam ke 7 baje tak. Good music aapke liye on Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti.
2: And कहते हैं ना दोस्तों कि हर गाने की अपनी एक कहानी होती है और हर किसी का अपना एक स्पेशल टेस्ट. So this one carries a lot of memories, taking you down memory lane. A beautiful song from the film विश्वात्मा, साधना सरगम की आवाज. काफी रिमिक्स बने, काफी रिमिक्सेस बने, but original remains original. हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, तरी का साथ, and that's your अवतार vibes on the waves of Radio Masti. A beautiful track आप सभी के नाम to get you in the mood.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feel the Musti. Radio Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, दिन चाहे कितना भी हेक्टिक क्यों ना रहा हो, म्यूजिक हमेशा एक छोटी सी स्माइल ले ही आता है. लाइफ फील्स लाइटर जब आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले कर रहा हो. एंड मूड को अपबीट रखने के लिए आरएफ टू रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ. केके की आवाज, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड विद दिस ट्रैक हम बनने वाली हैं टुवर्ड्स योर समाचार बुलेटिन. परी का साथ रहेगा शाम के 7 बजे तक. समाचारों के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी. डेडिकेटिंग दिस वन आप सभी के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ. हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ ग्रेट इवनिंग, एंजॉय दिस वन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news.
5: नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। देश में खाद्य सामानों को सुरक्षित रखने की तैयारी अब और तेज हो रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बेलरीव में एक बड़े भंडारण परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। करीब 375 मिलियन रुपए की इस योजना के तहत आधुनिक कोल्ड स्टोर और कृषि उत्पादों को तैयार करने वाली एक इकाई बनाई जाएगी। मॉरिशस में स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इससे नौकरियां पैदा होंगी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को मजबूती मिलेगी। म्यांमार के उत्तरी हिस्से में चीन सीमा के पास एक गांव भीषण धमाके से तबाह हो गया। हादसे में कम से कम 55 लोगों की मौत। धमाका खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में हुआ है। और विश्व दूध दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सेहत, पोषण और किसानों की आजीविका में दूध के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन खास है। कई देशों में इस क्षेत्र से जुड़े किसानों, पशुपालकों और महिलाओं के योगदान को भी सम्मान दिया जा रहा है। देश में खाद्य सामानों को सुरक्षित रखने की तैयारी अब और तेज हो रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बेलरीव में एक बड़े भंडारण परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। करीब 375 मिलियन रुपए की इस योजना में आधुनिक कोल्ड स्टोर और कृषि उत्पादों को तैयार करने वाली एक इकाई बनाई जाएगी। ये परियोजना नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे विकसित होगी। यहां 8000 टन तक खाद्य सामान रखने की व्यवस्था होगी। इससे सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और दामों में बढ़ोतरी या आपूर्ति की कमी जैसी स्थिति से निपटना आसान होगा। माधवी जगन्नाथ, रजनी बिकर।
6: मुकई स्थित एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के बीच

0: स्कूल रूम्स में से एक में है। यहाँ पर भंडारण की क्षमता के संचालन से संबंधित कार्य किए जाते हैं और साथ में स्थानीय कृषि उत्पाद संबंधी कार्य भी ऐसा मौसम और मंडी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसकी तादाद कई मिलियन टन तक पहुँच सकती है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के जनरल मैनेजर नवीन देवाल सिंह ने कहा, 8 मिलियन टन प्याज, आलू, गाजर मिलते हैं स्थानीय कृषकों की ओर से। इन्हें कोल्ड रूम में आगे रखा जाता है बिक्री से पहले। खराब मौसम और विश्व संकटों के चलते सरकार ने स्थानीय कृषि पदार्थों की भंडारण क्षमता को 2 गुना ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए आधुनिक रेफ्रिजरेटर भंडार घर बनाए जाएंगे बेलगीब में कोई 10 बीघा जमीन पर नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे। नवीन दयापाल सिंह ने आगे बताया, हम कोल्ड रूम के अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसका भंडारण कर सके। स्थानीय सब्जियों एवं फलों के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना है एग्रो प्रोसेसिंग परियोजना। बेलगीब में ही जहां सब्जियों को ट्रांसफर कर सके जो मौसम के हिसाब से प्राप्त हो, नौकरी भी पैदा होंगी। बहुत जल्द इस परियोजना के लिए एक कंसल्टेंट को चुना जाएगा। मॉरिशस की कृषि संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये परियोजना चलाई जा रही है। नवीन दयापाल सिंह ने आगे कहा, इससे उपभोक्ताओं को अच्छे दामों में फल एवं सब्जियां प्राप्त हो सकेंगी स्थिर दामों में, क्योंकि आयात पर निर्भर नहीं होंगे। इस तरह इस आधुनिकतम भंडारण परियोजना का उद्देश्य है स्थानीय उत्पादकता को गतिशील बनाना, कृषि खाद्य सेक्टर को एक मजबूत एवं समावेशी मॉडल में परिवर्तित करना।
1: मॉरिशस में स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट भी मिला है। स्थानीय और अफ्रीकी बाजार के लिए बनने वाली ये इकाई कई कुशल नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को और मजबूत बनाएगी। कारोबारी क्षेत्र में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए कंपटीशन कमीशन ने एक खास मौका दिया है। पेशेवर संगठनों और सहकारी समितियों से कहा गया है कि अगर उनके काम में ऐसी कोई प्रथा रही है जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है तो वे खुद आगे आकर इसकी जानकारी दें। ऐसा करने पर उन्हें सजा से छूट मिल सकती है। ये विशेष योजना 25 मई से 25 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
2: कार्टेल बनाने या टेंडरों में हेरफेर करने वाली कंपनियां कुछ मामलों में दंड से छूट प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें स्वेच्छा से उन गतिविधियों का खुलासा करना होगा जो कंपटीशन कमीशन के नियमों के अनुरूप नहीं है। इस प्रोग्राम तक पहुँच होने के लिए कड़े नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। कंपटीशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा, हमारी भूमिका केवल उल्लंघन के लिए सजा देना नहीं, कानून को बेहतर रूप से समझने में भी मदद करना है और सुप्रशासन को प्रोत्साहित करना, सभी संगठनों सहकारियों को आंतरिक ऑडिट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि ये देख सके कि कंपटीशन एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया हो। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए किसी कंपनी पर उसके वार्षिक कारोबार का 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मॉरिशस में स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित कर रही है। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट भी मिला है। शहजाद जुमन की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी बिकर को।
3: पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और टेक्नोलॉजी के बाद मॉरिशस एक और उच्च संभावना वाले क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। मेडिवेशंस लिमिटेड के चिकित्सा उपकरण निर्माण कारखाने की परियोजना को

0: हाल ही में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड से प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये नया कारखाना जिसे मुका स्मार्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा, विशेष रूप से अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटरों, आईसीयू और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट विभागों के लिए उपकरणों का उत्पादन करेगा। मेडिवेशंस लिमिटेड के सीईओ जाक ब्रियो ने कहा,
1: मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस इन मॉरिशस।
0: इस परियोजना का मकसद है मॉरिशस में चिकित्सा वस्तुएं तैयार करना स्थानीय मंडी और इलाकाई मंडी के लिए, साथ में अफ्रीकी देशों की ओर निर्यात के लिए भी। निर्माण के पहले चरण से संबंधित कार्य 2027 में निर्धारित, अभी प्लान के आखिरी चरणों पर कार्य कर रही है, जरूरी अनुमति हासिल कर रही है। इस पहले चरण के लिए 200 से 250 मिलियन रुपए तक की रकम की जरूरत। जब तीसरे या चौथे स्तर तक जाएंगे तब ज्यादा अहम मूल ढांचों की आवश्यकता होगी। फिर भी पहले चरण की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा ये रहेंगे। एक ऐसी परियोजना है जिसे चरणों में लागू किया जाएगा, लेकिन लंबी अवधि में ये न केवल एक हाई वैल्यू एडेड औद्योगिक गतिविधि को विकसित करने में मदद करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को और मजबूत भी करेगी। उन्होंने आगे कहा, इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। ये योग्यताओं के ट्रांसफर से भी संबंधित है, साथ में स्थानीय स्तर पर नौकरियां भी पैदा होंगी। इंजीनियर, टेक्नीशियन, कामगार, इलेक्ट्रिशियन आदि, साथ में मार्केटिंग, बिक्री और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में भी। एक बार पूरी तरह चालू हो जाने के बाद इस कारखाने का लक्ष्य स्थानीय बाजार के साथ साथ निर्यात मंडियों को भी आपूर्ति करना है, जिससे मॉरिशस के उद्योग के लिए विकास का एक नया रास्ता खुलेगा।
2: पूर्व वित्त मंत्री रेंगनाथन पादयाची को आज सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे उन बयानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिनमें कहा गया था कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2025 में 83 बिलियन रुपए छाप कर सरकार को ट्रांसफर किए थे। अपने वकील राउफ गुलबुल के साथ पहुंचे रेंगनाथन पादयाची ने कहा कि वे केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। लैंड बैरक्स में 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद वे वहां से निकले। हालांकि इस जांच के सिलसिले में उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 16 मई को इन बयानों के खिलाफ सीसीआईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक ने इन आरोपों को गंभीर, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया था। ये मामला राष्ट्रीय सभा में भी एक संसदीय प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कातेरा सापीले के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास का मामला अब बदल दिया गया है। टीपीपी की सिफारिश के बाद आरोपी पर अब पहले से योजना बनाकर मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाएगा। मामला बाद में इंटरमीडिएट कोर्ट में सुना जाएगा। आरोपी पर सब साल 2019 में एक विवाद के बाद एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप है। जिडो बोडा मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने जांच को एक नया मोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जिडो बोडा के खून और पेशाब में नमूनों में किसी भी नशीले या अवैध पदार्थ के कोई निशान नहीं मिले हैं। ये निष्कर्ष मुख्य आरोपी माइल रोज के उस बयान के विपरीत है जिसमें उसने दावा किया था कि जिडो बोडा नियमित रूप से नशा करता था। उधर पीड़ित परिवार ने भी एक पत्र के जरिए कहा है कि जिडो बोडा एक प्रतिभाशाली कलाकार था और FSL की रिपोर्ट ने उनके विश्वास को और मजबूत किया है।
3: 15 मई को लानिकोलिया में मृत पाए गए जिडो बोडा के मामले में एक नई बात सामने आई है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार उसके खून में अथवा पेशाब में ड्रग्स अथवा अवैध पदार्थ का कोई निशान नहीं पाया गया है। ये नतीजा इस मामले के डोमी से एक संदिग्ध माइल रोज के प्रारंभिक बयान से मेल नहीं खाता, जिसने पूछताछ के दौरान ये कहा था कि जिडो बोडा नियमित रूप से ड्रग्स लेता था। मृतक के परिजनों ने इस आरोप का विरोध किया था। ये उल्लेखनीय है कि दोनों ही 21 वर्षीय माइल रोज और लुइस माइल लाकुबॉब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माइल रोज ने जांचकर्ताओं से स्वीकार किया था कि उसने एक लेस के साथ जिडो बोडा का गला घोंटा था। जांच के अनुसार लुइस माइल लाकुबॉब ने शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी।
2: भारत के नेशनल

0: डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य अलग अलग देशों के विकास मॉडल, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय चुनौतियों को करीब से समझना है। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने आज एबन में आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की, जहाँ कई अहम विषयों पर बात की गई। युवाओं में तंबाकू, निकोटाइन और इलेक्ट्रिक सिगरेट का बढ़ता इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य था खासकर युवाओं को तंबाकू और निकोटाइन की लत से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना और बचाव के संदेश को मजबूत बनाना। कोयल सीतल रजनीकर।
1: तंबाकू और निकोटिन के खतरों पर आगाह करते हुए नौजवानों के समक्ष निरोध को बढ़ावा देने के मकसद से ये कार्यशाला लगाई गई। प्रस्तुत जानकारियों के मुताबिक तंबाकू मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जिसे रोका जा सकता है। प्रति साल इसकी वजह से 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। WHO के प्रतिनिधि ने कहा, मॉरिशस तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक हैं, फिर भी पिछले साल लगभग 1400 लोगों की मौत तंबाकू सेवन और तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। मॉरिशस में अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ साथ सिगरेट सेवन को घटाने के वास्ते कई कदम लागू किए गए। इनमें पार्किंग में स्वास्थ्य चेतावनियां शामिल हैं। इस बीच निकोटिन के नए उत्पाद के उभरने से सतर्कता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जूनियर मंत्री अनिष्टा बाबूराम ने कहा, निरोध को लेकर युवाओं पर जोर दे रहे हैं ताकि वे सिगरेट और वेपिंग से दूर रहें। वेपिंग मॉरिशस में गैर कानूनी है, लेकिन युवाओं के बीच ये प्रचलित है। ये कार्यशाला कई ठोस कदमों के साथ खत्म होगी, जिसका मकसद तंबाकू खोरी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना है।
0: साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्म वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान में आयोजित समारोह में इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। युवाओं की रचनात्मकता भी खास आकर्षण रही, जहां देश भर के माध्यमिक स्कूलों से आई करीब 200 छात्रों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। रंगों और चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पना, सोच और कला प्रतिभा को अभिव्यक्त किया। समारोह में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। विधिमा सिबुरन।
2: कवि, दार्शनिक और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा, रचनात्मकता और मानवतावाद के अपने दृष्टिकोण से पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। टैगोर मेमोरियल लेक्चर के 98वें संस्करण के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान ने द परफेक्ट पर्ल ऑफ द डीप ओशन विषय पर आयोजित एक ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। ओहेलिया कहती हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं समुद्र पसंद करती हूँ। कैम्ब्रिज प्रोजेक्ट में मैं इस पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अधिक प्रेरित हुई हूँ। एडिशेवा ने कहा, मैं खुद मोती हूँ, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखती। मैं इस पेंटिंग के माध्यम से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। इस वर्ष टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल द्वारा दिया गया, जिन्होंने आज की दुनिया में टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया।
3: L'occasion cause le la vie et la contribution de Rabindranath Tagore essentiellement comment nous besoin refaire

0: cherchons l'eau nous-mêmes. Deuxièmement, nous aussi cause la philosophie de l'éducation de Rabindranath Tagore.
1: मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और योगदान पर बात की कि कैसे हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने शैक्षिक आध्यात्मिकता पर बात की जो बच्चों की जरूरतों पर आधारित है। और तीसरी बात, टैगोर की अवधारणा ये है कि विश्व एक बड़ा परिवार है और हमारे बीच सॉलिडारिटी, साझा और शांति होनी चाहिए। ये दिखने में आसान विचार है लेकिन जबरदस्त संदेश है। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसे संदेश अपनाने चाहिए और अपनी जिंदगी में ढालने चाहिए।

0: शिक्षा, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन आयोजनों का उद्देश्य रविंद्रनाथ टैगोर के मूल्यों को बनाए रखना और मॉरिशस की युवा पीढ़ी को अपनी रचनात्मकता, सीखने के प्रति रुचि तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपने लगाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने आज एबन में आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की। करुणा लालू।
2: मॉरिशस उन 16 देशों में शामिल है जिसे नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्राम के संदर्भ में चुना गया। इस पहल का मकसद दुनिया के विभिन्न इलाकों के नागरिक और सैनिक उच्चाधिकारियों को विकास, शासन और सहयोग की चुनौतियों की बेहतर समझ प्रदान करना है। इसी संदर्भ में नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडर एम अवशल मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस फोर्स के 15 उच्चाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉरिशस में है। भारत में 11 महीने के एक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं जिसके दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का अध्ययन कर रहे हैं। सैद्धांतिक भाग पूरा होने पर 16 देशों में जाएंगे। इनमें मॉरिशस शामिल हैं जहाँ की संस्कृति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन कर भारतीय सरकार को सुधार के मार्ग का प्रस्ताव करेंगे।
3: And to suggest to the government of India how we can improve upon that. So that is the main focus of our tour over here.
2: इस डेलीगेशन का स्वागत भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने किया। कई विकास बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनमें भारत के समर्थन से मॉरिशस सरकार द्वारा साकार की जाने वाली परियोजनाएं भी शामिल
4: रही। पर्यावरण,
2: क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की नीति, मकान निर्माण को लेकर नीति, डिजिटल स्ट्रेटेजी आदि पर सवाल किए गए। यह प्रमाणित करता है कि दुनिया में मॉरिशस की एक अहम जगह है। ये डेलीगेशन 6 जून तक मॉरिशस में रहेगा। कई मुलाकातें निर्धारित हैं, खासकर पुलिस कमिश्नर और विभिन्न मंत्रालयों के साथ जिनमें विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं।
1: विदेश में म्यांमार के उत्तरी हिस्से में चीन सीमा के पास एक गांव भीषण धमाके से तबाह हो गया है। हादसे में कम से कम 55 लोगों की मौत। धमाका खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में हुआ है। कई घर मलबे में बदल गया है। दूध हर घर की सुबह का स्वाद है, बच्चों की सेहत का सहारा है और गांव की अर्थव्यवस्था की सफ़ेद धारा भी। आज विश्व दूध दिवस पर दुनिया दूध के पोषण और क्षेत्र से जुड़े किसानों, पशुपालकों के योगदान को याद कर रही है। भारत में ये कहानी और भी खास है जहां श्वेत क्रांति ने दूध की कमी से जूझते देश को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में खड़ा कर दिया है।

और अब चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा आज रात को। अगले 24 घंटों के लिए पूर्व

पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व तथा ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी और ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। कल बादल कुछ घिरे रहेंगे। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 22 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:38 पर होगा।

0: 6:23 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill में, Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill में, 78 साल की, 78 years old, श्री गणेश वेंकटाचलम, श्री गणेश वेंकटाचलम, जिन्हें लोग विष्णु नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे इनकी बहन रोजा वैथिलिंगम के मकान एवेन्यू ग्यू रोजमों ट्रेफल रोज हिल से उठाकर सैम मौतें की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 10 एम। शास्त्री रोड बुआ पियोले त्यागूज में, शास्त्री रोड बुआ पियोले त्यागूज में, 56 साल की, 56 ईयर्स ओल्ड, 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रबीता चौधरी, श्रीमती प्रबीता चौधरी, पैदाशी नाम तिरबोहन और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे इनके मकान शास्त्री रोड वापियोले त्यागूज से उठाकर सिपाही भीले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 एम। और नंबर 22 होवलेन उकुले क्यूपिप में, 80 साल के, 80 ईयर्स ओल्ड श्री करणदेव आलिया, श्री करणदेव आलिया जिन्हें लोग करणदेव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1:00 बजे, कल दिन के 1:00 बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 रोवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musti

92 रेडियो मस्ती रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.
2: And after Samachar, back with good music. ये है रफ्तार वाइब्स, मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक. For now we have Shreya Ghoshal, उनकी magical voice. After Sonu Nigam, it's time for Shreya Ghoshal. देखिए beautiful songs आपके लिए और आपके इस mood को हम set रखेंगे. साथ रहेगा आपका और मेरा शाम के 7 बजे तक in your रफ्तार वाइब्स.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

और चलिए दोस्तों, हमारा साथ दे रहे हैं आप और दोपहर से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे अब ये वक्त शाम की ओर बढ़ने लगा है। जैसे जैसे शाम आगे आ रही है, हम कुछ प्यारे गाने, रोमांटिक गाने आपके नाम पेश कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वी ऑल्सो हैव अ रोमांटिक मैसेज, कहते हैं गाना हो जाए फॉर स्वीट अर्शद एंड विशिंग यू गुड हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और कहते हैं कि डिस्टेंस हमें अलग भले ही रखे, लेकिन हमारा जो दिल है वो हमेशा तुम्हारे पास है। अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो मैं आप ही के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, एंड आई लव यू सो मच, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम रिबेका। क्या बात है, इतना रोमांटिक मैसेज अर्शद, ये है आपके लिए, एंड आई गेस यू आर वेरी वेरी लकी। सो ये गाना आप दोनों के नाम। कहते हैं कि जब मन भर जाता है तो लोग हाल चाल पूछना बंद कर देते हैं, दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जीत, एंड अल्लाह वॉन्चर से हमारा साथ दे रही हैं। एंड एक्चुअली दैट्स सो ट्रू, जब मन भर जाता है तो लोग डिस्टेंस बढ़ा ही देते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपसे हम कभी भी दूरी नहीं बनाएंगे।

0: दोस्तों कुछ प्यारे मैसेजेस लेकर आए हैं, कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं आपके लिए। साथ रहेगा आपका और मेरा शाम के 7 बजे तक। That's your Raftaar Vibes on the waves of Radio Masti.
1: Radio Masti.
2: Hit music only.
1: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: वेल फ्रेंड्स, शाम के 7:05 हो चुके हैं, मंडे इवनिंग, और ऐसे में हम साथ देने के लिए आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. आई नो कि मंडे के दिन में बस काम करने का मूड नहीं होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल कूल सूदिंग म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर खूबसूरत गाने तो लेकर आए हैं ही, और शो में चार चांद लगाने के लिए आपका साथ तो चाहिए ही, साथ में आपके मैसेजेस, डेडिकेशन ऑन 5499 1294. एंड आपको हम बता देते हैं कि लाइन खुली हुई है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 4028235. कट्स ऑन दुई कातवा खान साइक पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. तो चलिए अभी के लिए खूबसूरत गीतों का कारवा हम नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए ऐसे ही पेश करते रहेंगे टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

ब्यूटीफुल गाना, अ मास्टरपीस, टेकन इट फ्रॉम द मूवी राज 3, जावेद अली की आवाज में दीवाना कर रहा है। अगर ये गाने आपको भी दीवाना कर रहा है तो जरूर हमें बताइएगा कि गाने सुनकर आप किस किस को याद कर रहे हैं। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। वैसे हमारे पास एक कॉलर आया और गिरीश जी ने हमें फोन किया बहुत ही प्यार से, कहते हैं कि नहीं ऑन एयर बात नहीं करना है, अगले

0: ही नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए आपने ऑफर हमसे बात की, हमें बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपने गाना मांगा है मूवी आशिकी से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वन कुमार सानू की आवाज में।
1: Evening Lounge,
2: RM2
1: Radio Masti।

0: अभी के लिए मुझे पता है कि आप लोग थके हारे घर पहुंच चुके होंगे और शायद जितने भी सारे लोग इस वक्त साथ मिलकर खाना खा रहे होंगे आपको विश करेंगे बन अपचे शुभ आहार और इस मंडे इवनिंग को आप ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा। इस वीक की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है और इस महीने की शुरुआत भी, यानी कि स्टार्ट ऑफ द वीक। इट्स अ ब्यूटिफुल मंडे इवनिंग एंड स्टार्ट ऑफ दिस मंथ। इट्स अ वंडरफुल 1 June 2026। देखते ही देखते साल का छठा महीना भी शुरू हो चुका है, यानी कि इस साल में जो आधा महीना है वो चल रहा है अभी करंटली, एंड देखते ही देखते ऐसे ही ये साल ख़त्म हो जाएगा। आई नीड टू टेल यू कि सच में टाइम इज़ फ्लाइंग, टाइम इज़ रनिंग और रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है ये वक्त। चलिए यहाँ पर अगला गाना ख़ासतौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर अश्वन। आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन ऊपर आई कैन सी कि आपका नाम लिखा हुआ है एंड आप कहते हैं कि enjoying the lovely songs selection with the family dinner time. आपको भी बना पिछे शुभाहार। यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज किया है, हाई दी हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, as usual beautiful song selection, thank you so much, you want to tell your Jan that you love him so much even though we are not together, my feelings for you will never change, your place nobody can take in my heart, I love you a lot Sanjeev. और आप कहते हैं दी वो मेरी जान है, from someone who loves you like mad, from Asha. Asha, I just होप कि बस बहुत ही जल्द आप संजीव को अपने दिल की बात पहुंचा पाएं, एंड डोंट वरी अबाउट रिजेक्शन। वैसे कहते हैं ना कि अ क्लियर रिजेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर दैन लिविंग इन कन्फ्यूजन। तो अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर कि बस प्यार किया है तो बस जताना ही पड़ेगा। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ी बहुत हिम्मत मिल जाए, और अगर आपको हिम्मत जुटाना है तो हमारे गीतों को सुनने के बाद कीप फीलिंग रोमांटिक एंड कीप एक्सप्रेसिंग योर लव टू द वन यू लव।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Musti.

किसी के मन को छूकर फिर से आप लोग उनको जीने की वजह दे देते हैं, और जीने की वजह जब प्यार होता है तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है और भी निखर के सामने आती हैं। ये प्यार इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि दिल से दिल जब मिले तो आप इस प्यार को और भी बढ़ावा दो, और इस फीलिंग्स को और भी बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपके दिल तक पहुँचने के लिए और आपके रूह को छूने के लिए हमारे गीतों के जरिए। एंड आई जस्ट होप दैट यू आर फॉलिंग इन लव बाय लिसनिंग टू ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है। डोंट फॉरगेट, लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो। ऑफकोर्स आपके मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार कर रही हूँ 5499-1294, या फिर बात करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028035। पर जरूर आप हमें फोन करें। एंड चलिए अभी के लिए जितने भी सारे लोग इस वक्त रिलैक्स कर रहे होंगे, आराम फरमा रहे होंगे, आपको कहेंगे बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब काम से थके हारे कोई इंसान घर वापस जाता है ना, तो उनका घर एक्चुअली फील्स लाइक होम। और आपका घर घर इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहने की आदत हो गई है। आपका घर घर जैसा इसीलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर आपके अपने हैं, ये आपका प्यार का घरौंदा है। इसीलिए जितना हो सके बस रिलैक्स करिए, अपनों से थोड़ी बातें कीजिए, शेयर हाउ योर डे वाज और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछिएगा। दिस इज़ ऑलवेज नाइस टू नो कि लोग एक्चुअली कैसे फील करते हैं, स्पेशली आपके अपने। द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट गिफ्ट दैट आप अपनों को रोज़ रोज़ दे सकते हैं वो ये है कि बार बार रोज़ रोज़ आप उनके दिल का हाल उनके बारे में सुने, और आप ये भी पूछें कि आर दे ओके और आर दे फीलिंग गुड। तो चलिए

0: यहाँ पर आई जस्ट होप कि आप भी उस पार से अच्छा फील महसूस कर रहे हैं. एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Masti.

0: इश्क बुलावा जब आपका वक्त आता है तो प्यार आपको आपकी तरफ खींच लेता है या फिर वो खुद आपकी ओर खींचा चला आता है। वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप जैसे स्वभाव रखते हैं वैसे लोग ही आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। आई जस्ट होप कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे लोग ही आप अट्रैक्ट कर पाएँ और ऐसे में आपकी ज़िंदगी और भी सवर जाए। चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। वैसे लाइन पर कोई है हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम प्लेन दे गोश, उनसे हम जरूर बात करेंगे। नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: आपका नाम? आप? बिल्कुल ठीक।
1: मेरा नाम कविता।
0: कविता, खूबसूरत नाम है। एंड कविता जी, आप हमें बताइए आपका डिनर हो गया है?
1: नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। मैंने वेज बिरयानी बनाया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मेरे बेटे के लिए।
0: ओह हो, मुंह में पानी भर आया है। कोई बात नहीं,
1: अगर पास होता तो मैं सचमुच आपके लिए लेके आती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम वेट करेंगे और ये दिन दूर नहीं है।
1: ओह माय गॉड।
0: तो चलिए कविता जी, हमें बताइए कि अभी के लिए आप जब हमारे गाने सुन रहे हैं तो आपको किसकी याद आ रही है?
1: मेरे सभी मॉरिशन भाई बहनों के लिए।
0: हाँ जी,
1: स्पेशली एमबीसी स्टाफ के लिए,
0: थैंक यू सो मच।
1: वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते हैं।
0: That's really
1: क्योंकि
0: sweet.
1: मैं भी काम करती हूँ, इसलिए मैं सभी स्टाफ को मेरे जैसा सेम समझती हूँ। और स्पेशल मैं जहाँ पे काम करती हूँ राजस्थान ब्लू में, वहाँ पे सब स्टाफ के लिए, आपके लिए, सभी मॉरिशन के लिए, सभी सुनने वालों के लिए एक गाना जो मैंने कभी रेडियो में नहीं सुना, मगर सुनना चाहती हूँ ताकि किसी और को मालूम पड़े जे ये गाना
0: ये
1: है।
0: गाना बिल्कुल। हाँ, और आपकी फरमाइश की है
1: गाना?
0: हाँ, अलबेला मूवी का देवता माना।
1: हाँ,
0: तो ये गाना बिल्कुल हम चलाएंगे आपके लिए। एंड ये गाना किसके नाम?
1: किसके नाम? सभी मॉरिशन वालों के नाम और सभी सुनने वालों के नाम। और बहुत बहुत थैंक यू दिल से, क्योंकि आप ये गाने को चला पाए, क्योंकि मैंने कितना बार ट्राई किया है, लगता आज मेरा लक बहुत अच्छा है। अगर आज मैंने लॉटरी खरीदा होता तो मुझे सचमुच में मिल जाता, मगर
0: चलिए आई जस्ट होप कि ये दिन भी आप को नसीब हो एंड आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच कविता जी, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
1: तो थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू। चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी कविता जी फ्रॉम प्लेन दे गोश। तो उन्होंने गाना मांगा है तो जरूर उनका गाना हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए ये गाना चल पड़ा आपके नाम।

0: बिल्कुल, प्यार के कागज में बस दो ही नाम लिखे जाते हैं, एक तेरा एक मेरा, बस ऐसे ही कहानी बनती जाती है दो दिलों की। और बस इस दो दिलों के मेल के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर हमें बताइएगा, और इस दिल के खेल में आप कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी हम जानना चाहते हैं ऑन 5499 1294। और कुछ लोग कहते हैं कि प्यार सौदेबाजी है, हम तो कहते हैं एकदम सही बात है, क्योंकि बस एक हाथ से दिल लेते हैं तो दूसरे हाथ से दिल देते भी है। इट्स जस्ट द एक्सचेंज ऑफ लव एंड द रेसिप्रोकेशन ऑफ लव एंड द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ लव, जो हर लोग अपनी ज़िंदगी में ढूंढते रहते हैं। अगर आपको सच्चे प्यार की तलाश है तो आपको सच्चे प्यार की को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सच्चा प्यार ही आपको ढूंढ कर आप तक पहुँच ही जाता है। बस आपका दिल और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। वेल, 8:07 हो चुके हैं, एक बार फिर से अ वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। एंड हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत गाने, एंड इट्स योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर आपसे कुछ बातें हो रही हैं कुछ प्यार के बारे में। तो वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट लव, आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है अबाउट लव जरूर बताइएगा। कीप एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ऑन 5499 1294, या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं 4028235। कट्स ऑन द कटवाटन सेक पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

वैसे ये गाना हमारे सिचुएशन पर एकदम परफेक्टली सूट होता है, जहाँ पर आपसे हम थोड़ा सा दूर हैं और थोड़ा करीब भी हैं। दूर इसलिए क्योंकि डिस्टेंस का मामला है, और पास इसलिए है क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता तो ऐसा ही है। मतलब डिस्टेंस भी इस रिश्ते को

0: कमज़ोर नहीं बना पाता है। वेल कहते हैं कि जब प्यार बहुत ही ताकतवर होता है, प्यार में बहुत ही स्ट्रेंथ होता है, तो डिस्टेंस डजंट रियली मैटर। और आई गेस बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। वेल यहाँ पर किसी का फ़ोन कॉल आ रहा है और ऑफ एयर कुछ कुछ लोगों से हमारी बातें हो रही थी, तो चलिए अभी के लिए हम देखेंगे कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। तो चलिए आपको नमस्ते।
1: नमस्ते, मैं सुनीता हूँ।
0: सुनीता जी नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए। आप रेडियो मस्ती सुन रही हैं, एंड एज यूजुअल यू आर फीलिंग होम। और गाने कैसे हैं?
1: गाने बहुत अच्छे हैं, हम रोज सुनते हैं, 12:25 तक या 1 बजे तक सुनते रहते हैं, जब जाते हैं थोड़ा काम करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बताइए सुनीता जी, आज कौन सा गाना आपको सुनना है?
1: मेरी बहू के बर्थडे था, मैं एक गीत मांगना चाहती हूँ उनकी बेटी की तरफ से।
0: बिल्कुल,
1: यानी उज्जवला उज्जवला कौनाथ को, और उनकी पति है राहुल।
0: हाँ जी।
1: और उनकी जो बेटी है अशियाना, और दूसरा का नाम है पुरवी, और मैं उनकी सास हूँ सुनीता, और उनके देवर हैं अखिलेश, और उनकी शैतानी है काजल, और साथ में है तेजवी, और सभी कौना परिवार, सभी कलेक्टिव परिवार की तरफ से।
0: ओके, और
1: मांग रही हूँ, लेकिन मैं एक गीत मांगना चाहती हूँ, मालूम नहीं मिलेगा या नहीं, साजन बिना सुहागन का गाना।
0: कौन सा वाला?
1: ओ मामा डियर मामा, साजन बिना सुहागन में गाना है। मामा
0: बस मामा, इस गाने को हम चलाने की कोशिश करेंगे, हम ट्राई करते हैं। तो सुनीता जी
1: बजा देंगे तो ये दोनों बच्चे आपको दुआ देंगे।
0: ओके हम चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।
1: नमस्ते।
0: तो ये थी हमारी प्यारी सी सुनीता जी, ऑल द वे फ्रॉम मतियाहोज, हमेशा फ़ोन करती रहती हैं, और बस उनके गाने, उनके सिलेक्शन, और बस यही तो हम करते हैं, आप लोगों के दिल को थोड़ा सा और ज़ोर से धड़काने के लिए आपके रिक्वेस्ट के गाने हम चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ ही देर में हम ट्राई करेंगे, अगर उनका गाना हम चला पाएँ तो। चलिए ये गाना आप लोगों के नाम।
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
4: RM2.
5: Radio Musti.

0: वेल एट 39 ऑलरेडी दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज. चलिए आप हैं दृष्टि फ्रॉम फ्लैक एंड यू वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर योर स्वीट मॉम. शायद उनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू योर मॉम एंड विशेस कमिंग फ्रॉम दृष्टि एंड दिस नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर योर स्वीट मॉम पूनम एंड डैड सुनील. एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली ज्योति जी जो इस वक्त कनेक्टेड हैं शातु बनागा से. नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखन मतलब फैमिली एंड हमारी टीम के लिए. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच ज्योति जी. एंड चलिए वी ऑल्सो हैव अंतिश कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड. एवरी टाइम जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है तो आप हमेशा अपने मैसेजेस भेजते हैं या फिर आप क्या खा रहे हैं उसकी तस्वीरें भेजते हैं तो ऐसा लगता है कि आप दूर ही नहीं हैं. सो थैंक यू सो मच अंतिश हमारा साथ देने के लिए. द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ आउट स्पेशली फॉर योर स्वीट मामा टू योर होल फैमिली जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त शायद नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे आपको भी बॉन कुराज एंड कीप एंजॉयिंग द ब्यूटिफुल गाने ऑन RM2 Radio Masti.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2
1: Radio Masti.

बस आपको कल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज रात को ही आप चांद को देख पाएंगे और इसको निहार पाएंगे। शायद आपका जो बॉन्ड है चांद के साथ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारी तरह। चलिए यहाँ पर जाते जाते वी विल डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर जगमणि जी। आपने कहा है प्लीज़ प्ले द सॉन्ग फॉर द मूवी जस्टिस चौधरी संग बाय लता जिन किशोर साहब। अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट विल ट्राई इट फॉर नेक्स्ट टाइम। देवी काजी आप है पेरिस से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एंड आपको वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ RM2। चलिए इसी के साथ हमारे जाने का टाइम आ चुका है। कल हमारी और आपकी मुलाकात सेम टाइम यानी कि 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय। शुभ रात्रि, शब बख़ैर। RM2 रेडियो मस्ती।

दुनियादारी को भुला के बस आपके पास चली आई हूँ आपकी नीतू. लेट मी विश यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स. प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? ठीक ठाक. सो वंस अगेन आपका स्वागत है इन लेट नाइट ग्रूव्स. रात्रि के 12 बजे तक 3 घंटों का सफर है. मस्ती करेंगे, वी आर गोना हैव फन विद दोस लवली लवली प्यारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग्स, व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून्ड.

जैसे बॉलीवुड मेलोडीज की हमेशा हम बात करते हैं, सिर्फ गाने नहीं होते बल्कि एहसासों का एक खूबसूरत सफर भी होते हैं। जब भी कोई मधुर धुन कानों में पड़ती है तो दिल अपने आप ही पुरानी यादों की गलियों में खो जाता है, होता है ना? कभी किसी मोहब्बत याद आती है तो कभी बचपन के सुहाने दिन। बॉलीवुड मेलोडीज ने हर जनरेशन को वैसे एक अलग पहचान दी है। इन गानों की सबसे खास बात ये है कि ये सीधा दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंच जाते हैं।

जिसमें से एवरग्रीन बॉलीवुड मेलोडीज में एक अजीब सी रूहानियत होती थी। हर सुर में मिठास, हर लफ्ज में गहराई महसूस होती थी। चाहे बरसात की रात हो या तन्हा सफर, एक सोलफुल मेलोडी हर मूड को और भी खास बना देती है। ये गाने हमें जीने का एक नया अंदाज भी सिखाते हैं। जब दुनिया की भागदौड़ से इंसान थक जाए, तब एक प्यारा सा गाना उसके मन को सुकून देता है। सो नेक्स्ट गाना आपके नाम।

एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये इमोशंस को बिना कहे समझा देती है। कभी प्यार का इजहार, कभी जुदाई का दर्द, कभी खुशी का जश्न, हर एहसास के लिए बॉलीवुड में एक मेलोडी जरूर मिल जाती है। इसी वजह से लोग इन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ गाने तो ऐसे भी होते हैं जो सालों बाद भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने पहले दिन लगते थे।

जब लता मंगेशकर, रफी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जैसे महान गायकों की आवाज मेलोडीज में गूंजती थी, तब हर गाना अमर बन जाता था। उनकी आवाजों में जो जादू था, वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि जज्बातों को आवाज भी दी। इसलिए आज भी उनके मेलोडीज सुनते ही दिल में एक अलग सी खुशी जाग उठती है।

यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए इन लेट नाइट ग्रूव्स। वेल, बॉलीवुड मेलोडीज ने दुनिया भर में इंडियन सिनेमा को एक अलग पहचान दी है। कई लोग हिंदी समझ भी नहीं पाते, लेकिन मेलोडीज की मिठास उनके दिल तक फिर भी पहुंच जाती है। ये हो ही ना कमाल।

म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और बॉलीवुड ने इस बात को बार बार साबित भी किया है। एक अच्छी मेलोडी जुबान की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ दिल की आवाज होती है।

0: रोमांटिक बॉलीवुड मेलोडीज का असर तो और भी गहरा होता है जब हल्की ठंडी हवा चल रही हो, रात सुहानी हो और बैकग्राउंड में कोई प्यारी सी मेलोडी बज रही हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म जैसे लगने लगती है। ये गाने सिर्फ दो दिलों को नहीं बल्कि दो रूहों को करीब ले आते हैं। बॉलीवुड ने प्यार को मेलोडीज के जरिए इतना खूबसूरत बनाया है कि लोग हर मूड में गाने सुनना पसंद करते हैं।
1: hey,

दर्द भरी मेलोडीज भी बॉलीवुड की एक अनमोल पहचान रही है। जब दिल ही टूट गया या तो जिंदगी उदास लगती है, तब सैड मेलोडीज मन का बोझ हल्का कर देते हैं। इन गानों में इंसान को अपनी कहानी नजर आती है। दैट्स व्हाई अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ मेलोडीज दिल के जख्मों पर मरहम की तरह काम करते हैं।

Already in the second hour, thank you so much. Bon courage to all those at work and Bollywood melodies ke saath jude hain. Thank you. वैसे इनका कनेक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, ये गाने हमारी यादों का भी हिस्सा बन जाते हैं. किसी शादी का गाना, किसी सफर की मेलोडी या किसी दोस्त के साथ सुना हुआ सॉन्ग, हर मेलोडी के साथ एक कहानी जुड़ी होती है. इसलिए जब भी वो गाना दोबारा सुनाई देता है, पूरी यादें ताजा हो जाती है.

मेलोडीज की एक और खासियत ये है कि ये हर फेस्टिवल एंड हर ओकेशन को और भी रंगीन बना देती हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, म्यूजिक के बिना हर सेलिब्रेशन अधूरा लगता है। मेलोडीज लोगों को एक साथ लाती हैं और खुशियों को और भी बढ़ा देती हैं।

जैसे एक अच्छी बॉलीवुड मेलोडी इंसान के मूड को तुरंत बदल सकती है। अगर मन उदास हो तो मेलोडी सुकून देती है, और अगर दिल खुश हो तो वही मेलोडी सेलिब्रेशन को और भी खूबसूरत बना देती है।

म्यूजिक थेरेपी का कॉन्सेप्ट आज दुनिया में मशहूर है, लेकिन बॉलीवुड मेलोडीज़ तो सालों से लोगों के दिलों और मन को हील करती आ रही है।

पहुंच गए हैं हम लास्ट आवर में, पता भी नहीं चला ना। वैसे मेलोडीज में लिरिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब शायरी होता है, जब शायरी और सुर एक साथ मिलते हैं, तब एक अमर गाना जन्म लेता है। पुराने लिरिसिस्ट्स ने इतने खूबसूरत लव्स लिखे हैं कि आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हर लाइन में एक फिलोसॉफी, एक इमोशन और एक सिंप्लिसिटी होती थी जो सीधा दिल तक पहुंच जाती।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड़ किन्ने खा लिया
3: स्वीटी,
2: गुड़ वाली चाह किन्ने पीती
3: स्वीटी,
2: मुआ जिदा नाना किन्ने खिचे आ
3: हाँ।

इस समय आप शायद लॉन्ग ड्राइव पर हैं या फिर वापस घर को लौट रहे हैं. यू माइट बी ड्राइविंग, जहाँ भी रहे होंगे. रोड ट्रिप्स सफर भी बॉलीवुड मेलोडीज के बिना अधूरे लगते हैं. जब आपके फेवरेट मेलोडीज बजते हैं तो सफर और भी यादगार बन जाता है. म्यूजिक सफर की थकान को कम करता है और हर पल को एंजॉयबल बना देता है. इसलिए लोग अपने प्लेलिस्ट्स, अपने रिपर्टोर में ओल्ड एंड न्यू बॉलीवुड मेलोडीज जरूर रखते हैं.

मेलोडीज ने रेडियो कल्चर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। रेडियो पर जब कोई एवरग्रीन मेलोडी बजती है तो लिसनर्स तुरंत उसे कनेक्ट हो जाती है। आरजे की आवाज और सोलफुल मेलोडी मिलकर एक मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। वैसे हमारी हम सब की पूरी कोशिश तो यही है कि म्यूजिक के जरिए आपके दिल को सुकून पहुंचे, क्योंकि म्यूजिक के बिना रेडियो की दुनिया अधूरी लगती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बॉलीवुड मेलोडीज हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशंस, मेमोरीज एंड फीलिंग्स का एक खूबसूरत संगम है। हर मेलोडी एक कहानी सुनाती है, हर सुर एक एहसास जगाता है और हर गाना दिल को किसी न किसी तरह छू ही जाता है। शायद इसीलिए बॉलीवुड मेलोडीज का जादू कभी पुराना नहीं होता और ना ही होगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।